हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
5: कयल पार्लियामेंट मंजूरी ॾिनी त हुन खां पोइ रेफरेंडम थींदो हुकूमत अकेले सिर उहो फ़ैसिलो नथी करे सघे मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिले खे तस्लीम कंदियूं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउल्लाह चयो त इकॉनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो अवाम नवाज़ सुभाष चाहे थो त केर बि रोके नथो सघे पीपुल्स पार्टी सूबनि वारे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदि अमल ॾिनो आहे।

0: डिक्टेटर के कालाबाग डैम ठाहिण न ॾिनो त सिंध जो विरांगो कीअं थर ॾींदासीं। सूबनि जूं ॻाल्हियूं करण बंदि कयो न त MRD जहिड़े तहरीक शुरू थी वेंदी। पीपी सिंध सदर निसार खोड़े जो केन शाह में MRD जे शहीदनि जे वर्सी तकरीब ख़िताब। निसार खोड़े चयो त कुझु माण्हू असांखे काकरोच पिया चवनि, जेकॾहिं काकरोच निकिता तव्हां रही न सघंदा। सिंध जो विरांगो कॾहिं बि मंज़ूर न आहे। सूबनि खे अख़्तियार ॾे ख़ुदि मुख़्तियार बणायो वञे। सिंध जो अवाम विरांगो नथो चाहे।
1: चार महीनों से चल रहा है, आपने देखा होगा बजट इजलास में भी ये खामा हुआ। तब से लेकर कहा गया है कि भाई इसको तोड़ेंगे, उनके लिए मौके वतन है, ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो खाया है, जो कब्जा किया है, कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें, ये आपके इस रेजुलेशन में तुम न करें कि जो आपने देश किया है समी में वापस करें, तो हमारा लैंड वापस करें।
2: अगर सिंध की मदानियत के ऊपर आप बात करेंगे तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान की मदानियत को छेड़ देंगे।
0: सिंध कौम परस्त वकील ने साझा वंदन,
3: वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन?
4: ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले।
0: ॾींदा अमां ठहराउ वारो ड्रामो करे करप्शन जो हिसाब किताब गुम नथा करे सघो। सूबनि जे घणी आमदनी वारियुनि शयुनि ते वफ़ा कब्ज़ो करे वेठो आहे। पोर्ट सिंध खे वापसि कयो। पंजाब जे लखन एकड़ ज़मीन आबाद करण लाइ सिंध खे बंजर बणाइण जी साज़िश थी रही आहे। कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज वड़ाए चयो त सिंध जे विरांगे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहद आहिनि। सिंध बार काउंसिल जे सदर अब्दुल हसीब जमाले चयो त सिंध पाकिस्तान जे क़याम लाइ किरदार अदा कयो, जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त मोहसिन नक़वी मुल्क खे क्रिकेट वांगुरु समझी रहियो आहे। सूबनि खे विरिहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे। सिंध जे मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते गौर वीचार लाइ सिंध असेंबली जे 12 रुकनी ख़ासि कमेटी जो पहिरियों इजलास MQM जमायत इस्लामी ऐं PTI तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो। कमेटी सरबराज़ ज़ियाउल हसन नज़ार चयो आहे त मकानी निज़ाम बाबति MQM जो बिल न आहे आयो, असेंबली जी इजाज़त सां आई, उन ते गौर कयो वेंदो आहे। नओं चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम हवाले थी वेंदा आहिनि। एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ाने जा मामला ॾिसी सघंदो। MQM जे ताम चयो त धांधली ऐं जहली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे। जमायत इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तां इतफ़ाक़ नथा कनि। अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खड़कायो वेंदो। PTI जे शबीर कुरैशी चयो त अणजुंडियल नुमाइंदनि खे UC में विहण मुनासिब न आहे। अणधुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कया वञनि।

एमक्यूएम संजय विरांग जो रिंगट बंद न कयो। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आए सूबे के विरांग के गद्दारी करार दिनर सब खां वडी गद्दारी आए। असां जा वॾा रद बलान करे कायद आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ, ख़बर न आहे की उन्हनि खे भुट्टो जे पाकिस्तान में ढिके छॾियो। अॼु कराची जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे, समूरे मुल्क में आबादी जे हिसाब सां सूबा ठहण घुर्जनि। वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे, हू कंहिं बि फॉर्म ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। अवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे उनखे हटाए सघे।

0: पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
4: इन असेंबली में मैं समझता हूं कि वो उनका एक पॉलिटिकल इकदाम था जिससे यकीनन उनको सियासी तौर पे जो है वो फायदा हुआ।
5: वफाकी हुकूमत नवन सूबन वारे मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराइण जो इशारो ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाला चयो आहे त नवन सूबनि जे हवाले सां फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी। गॾियल पार्लियामेंट मंज़ूरी ॾिनी त उन खां पोइ रेफरेंडम थींदो। हुकूमत अकेले सिर इहो फ़ैसिलो नथी करे सघे। मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिले खे तस्लीम कंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाला चयो त इकनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे आहे थो त केर बि रोके नथो सघे। पीपुल्स पार्टी सूबनि वारे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदअमल ॾिनो आहे। डिक्टेटर खे कालाबाग डैम ठाहिण न ॾिनो त सिंध जो विरांगो कीअं थियणु ॾींदासीं। सूबनि जूं ॻाल्हियूं करणु बंदि कयूं त एमआरडीए जहिड़ी तहरीक शुरू थी वेंदी। पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़े जो के एन शाह में एमआरडी तहरीक जे शहीदनि जे वर्सी तकरीब खे ख़िताब। निसार खोड़े चयो त कुझु माण्हू असांखे काक्रोच पिया चवनि। जेकॾहिं काक्रोच निकिता त अवां रही न सघंदा। सिंध जो विरांगो कॾहिं बि मंज़ूर न आहे। सूबनि खे इख़्तियार ॾेई ख़ुदमुख़्तियार बणायो वञे। सिंध जो अवाम विरांगो नथो चाहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: مہران کی ثقافت سے
1: FM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Avon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: Brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
4: असां दहशतगर्दनि सां मुक़ाबिलो थियो. पुलिस रेंजर ते हमलनि में मुलविस हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो. अमरीका में हिमत आहे त ईरानी फ़ौज खे मोंडे असांखे दॿा ऐं धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे. ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त अमरीका जारियत बंदि करे त आबनारम खुली वेंदो. बाबा सूमर ते ओमान सां मुआदे ते सयूं थी वेंदियूं. अरब मुल्कनि जे सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि. अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे. इस्माइल बकाई चयो त आबनारम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे. तेल क़ीमतुनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे. सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा. ईरान जे क़ौमी सलामतकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका हुसैन जासी वधीक ॿ ॼणा ज़ख़्मी. मस्जिद इमारतुनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान पहुतो. सऊदी अरब जे शहर बनी हुसैन जे मिज़ाइल हमले. सिविल डिफेंस तर्जुमान जो चवण आहे त शहरी हंधनि खे निशालमी कानून जी भञकड़ी आहे. इराक पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ लाचिंग पेट ते न बणजंदो. इराकी वज़ीर आज़म चयो आहे त पंहिंजे सरज़मीन तां पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ कंहिं बि सरगर्मीअ खे रोकियो वेंदो. पंहिंजे सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियणु न ॾींदासीं. असांजी सलामतीअ खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश अवाम जे हितां थींदी. मुस्लिम लीग नून पारां पंजाब में बलदियाती चूंडूं कराइण जूं तयारियूं शुरू करे छॾियूं. मुस्लिम लीग नून पंजाब जे सदर राणा सनाला जी सदारत हेठि इजलास में पार्टी उहिदेदारनि खे चूंडुनि जी तयारी जी हिदायत कई. इजलास में नवनि सूबनि बाबति बि ॻाल्हियूं कई वियूं.

0: लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तकरीब नवनि सूबनि जी मुखालफत ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर तकरीब में मज़र अब्बास
1: पोएट्री इज़ अराउंड अस द पोएट्री ऑफ क्लैरिटी
0: अबड़ो ऐं ॿिया शरीफ़ संदन चवण आहे त मुल्क में सूबनि खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ इंतिशार पखिड़े रहिया आहिनि सूबनि खे टोड़ण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद खतरे में पइजी वेंदो सूबनि खे टोड़ण वारनि ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िले सतह ते इख़्तियार ॾिनो ऐं नवाब अली मोहम्मद ऐं नौजवान जी गुमशुदगीअ नौजवान जी गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ थाणे अॾो एहतजाज कयो वियो एहतजाज कंदड़नि मथां बचलपुर थाणे ते 34 सुञातल समेत 49 ॼणनि ख़िलाफ़ ड्यूटी अटकाउ जो केस दाख़िल कयो वियो जॾहिं त 8 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे
2: KTN News।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
6: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

ये बताइए कि आप लोग ने नाश्ता भी कर लिया और कुछ सुनने के लिए आप लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसके टाइम का ख्याल थोड़ा आपने रखना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं कोई सवाल बता रही होती हूँ तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ उसके जवाब मैं आप लोगों से 12 बजे ही लूंगी, तो उसका मतलब यही होता है कि मुझे उसका जवाब आपसे 12 बजे ही चाहिए। तो अभी आप सुने मेरे सवाल को और दिमाग लगाएं और थोड़ा सा बताएं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, आप लोग नकल कर लेते हैं लेकिन नकल आपके पास खुद समझदार हैं आगे। तो जी मैं अपना सवाल आप लोगों से बताने लगी हूँ।

तो जी जैसा कि सुन रहे थे हम लोग यहाँ पर फैजल की आवाज में एक सॉन्ग और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, ये न्यू है इनका। तो जो आपको पता है कि मैं कोई भी न्यू सॉन्ग हो कोई भी चीज हो तो मैं आपको जरूर शेयर करती हूँ। ये सॉन्ग न्यू था तो क्यों ना मैं आपके साथ सुनती, तो मैंने आपके साथ ही इसको एंजॉय किया है और ऐसे ही आपने भी मेरा सॉन्ग मेरे साथ एंजॉय किया होगा। तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यार यहाँ पर अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है।

हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद बुगटी। कहते हैं कि अब्दुल मजीद बुगटी रोड़ी से शो नाई से आरजे सन्ना। थैंक यू सो मच अब्दुल मजीद बुगटी, और आपने मेरे शो को एंजॉय किया है, मुझे ज्वाइन किया है, मेरी आवाज को सुने तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरा शो कैसा लगता है। ऐसे ही आपने हर संडे मेरे साथ ज्वाइन रहना है और मेरे साथ अपनी आके सारी बातें करनी है, और आओ बात करने में रहना है हर इतवार को साथ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, पूरे 2 घंटे तक आपने अपनी सारी बातें मुझे बतानी हैं। तो जी अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे को। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रजाक, कहते हैं मोहम्मद खान खंबार, वफा जमाल खंबार, सरदार मोहम्मद अली खंबार, हेलीपोर्टर स्टाफ से शो सुन रहे हैं बहन सना। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन रहे हैं इतने सारे।

लोग आप सबको मेरा सलाम हूँ अब्दुल रजाक, आपको भी, और कैसे हैं आप? और आपने बहुत टाइम बाद मुझे ज्वाइन किया, बल्कि सॉरी सॉरी मैं आपके बाद बहुत टाइम बाद आई हूँ। ओके जी, आप मुझे हमेशा ज्वाइन करते हैं, ऐसी बहुत खुशी होती है, ऐसी आपने हर इतवार को मुझे ज्वाइन करते रहना है। और जैसा कि मैं तो आपके साथ होती हूँ मौजूद, और ऐसे ही जैसे कि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो ऐसे ही। तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आओ बात करें का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने सिर्फ मुझसे बहुत सारी बातें सुननी होती हैं, आप लोगों ने अपनी भी बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बतानी होती हैं। तो जी आप लोग मुझे बताएं कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स कि आप लोग क्या कर रहे हैं जो ऐसा आप लोगों ने मुझे भी ज्वाइन किया हुआ है, और अपना कोई एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और जो आज ही आपकी एक्टिविटी होने वाली है वो भी जरा मुझे बताएं कि वो आज आपकी कौन सी एक्टिविटी है जो आज आप करने वाले हैं। अच्छा, जो अभी गाड़ी चला रहा होगा तो उसको कितने मजे की सॉन्ग सुन रहे होंगे, जो अभी जो गाड़ी में होगा वो कह रहा होगा सॉन्ग चलाएं। तो जी अगर आप लोग अपने पसंद का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी दे दें, और साथ में अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी जरूर लिख के भेज दें, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो ये रूल्स है मेरा, तो जाके जाइए और मेरे सवाल का जवाब बताइए। अगर मेरा सवाल किसी ने अभी तक नहीं सुना तो मैं उसको अपना सवाल बता देती हूँ कि जी मेरा जो सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने बताना कि अगर एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा दे रहा है तो वो कितनी देर तक हम उसको खा सकते हैं। जरा जाइए और पता लगा के और मुझे बताइए जरूर। जब तक यहाँ पर कर रही हूँ मैं आप लोगों का वेट।

0: तो जी यहाँ पर टाइम होता है अभी हमारे पास छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, और अभी हम जैसे ही ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें, लेकिन रहेगा मेरे साथ। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सवाल मेरा बहुत आसान से सवाल, उसका जवाब मुझे देते हैं और अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ, ताकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम लोग आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले कर देंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो जी, और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ये मैं आपको आकर बताऊंगी कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो लाइन में है मेरे साथ। तो बस अभी हम चलते हैं छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, तो रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kail. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6

0: सुन जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुदंदा रहो
2: बाबू भाई बनना मुझे सार है बाबू भाई

0: बाबू।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: तारीख है 26 जनवरी है अमजन ट्री वगे ताई हडन जी बीमारी में मुब्तला मरीज हडन आई जोड़न जे सूर चेल आई कुनरग जो सूर हडन जी टीबी आई कैंसर बारन में हडन जा मसाला शुगर जे मरीजन में जख्म जो न भरजन आई हडन में मुब्तला मरीजन जो स्पेशल चेकअप कयो हेंदो तो देर छाजी इन मुफ्त मेडिकल कैंप मा फायदो हासिल करियो। एड्रेस डॉक्टर भागचंद शिफा डी केयर क्लिनिक मेन रोड कंधरा राबतो 0383-71-2326।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं जी FM 88 आओ बात करें विद आरजे सना के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक रहता है आपको मेरे साथ, तो यहाँ पर एक घंटा हमारे पास ऐसे ही खत्म हो जाता है जैसे पता ही नहीं चलता, जैसा कि हमारा है ही नहीं। तो जी मैं जो मेरे सवाल था उसका आप लोग मुझे दें और अपने सॉन्ग के नाम के साथ ताकि आपका सॉन्ग भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, जिसने जो मुझे अभी न्यूली सुन रहा है और ज्वाइन करने के लिए परेशान है, तो जी मैं आपको बताऊं दोबारा कि आप लोग मुझे ज्वाइन इतने आसान तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल उठाना है और टाइप करना है SKR लिख के सेंड करना है अपना 8881 पे अपने नाम के साथ, करते शहर के नाम के साथ आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मुझे लाइव फेसबुक से सुनना चाहते हो, फेसबुक को ऑन करना है, फेसबुक को ऑन करने के साथ आपने जाके जी FM88 का पेज ओपन करना है, आपको मेरे नाम का फ्लायर दिख जाता है आओ बात करें विद आरजे सना के साथ, तो आपने जाके वहां पर मुझे मेरी आवाज सुननी है और आवाज को सुनने के साथ देर किया बगैर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है। और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सवाल सुन चुके हैं, और अगर मेरा सवाल नहीं चला तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जी मेरा सवाल ये था कि आपने मुझे बताना है कि अगर सुबह में एक जो है मुर्गा एक अंडा देता है तो वो हम कितनी देर तक खा सकते हैं, आपने जाके ये पता लगाना है। और अच्छा, हम मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं तो जी हम लोग जो है ना कमेंट्स देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग सुनेंगे एक और खूबसूरत सा राहत फतेह अली खान की आवाज में सॉन्ग, जो कि हमने बहुत टाइम से नहीं सुना, बल्कि मैंने तो बिल्कुल अकेले नहीं सुना।

भी सुनती हूँ हमेशा आप लोगों के साथ ही, तो ये सॉन्ग भी मैं आज आपके साथ सुनूंगी। लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारे और कौन मौजूद है। अब्दुल रजाक ने हमें सवाल का जवाब दिया है, और सवाल का जवाब देने के बाद वो कहते हैं कि सॉन्ग हट मते कया आसी। अच्छा जी, जरूर जरूर ये वाला सॉन्ग प्ले करेंगे जब अगर आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। और ऐसे ही मसरूर अहमद ने भी हमें सवाल का जवाब दे दिया है और कहते हैं कि जो सवाल का जवाब दिया है पता नहीं कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर तो हम आपसे ही सुनेंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर मैं आपको मैं ही बताऊंगी लास्ट में, और अगर आप अपने पसंदीदा कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बता दें ताकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे जरूर। तो चलिए यहाँ पर सुनते हैं हम लोग राहत फतेह अली खान की आवाज में, जो मैंने सॉन्ग आपको बताया है वो सॉन्ग हम लोग प्ले करते हैं, वो सुनते हैं।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग जो है राहत फतेह अली खान के आवाज में एक सॉन्ग चाल। तो जी कैसे हैं आप सब सारे सॉन्ग सुनने के बाद? तो जी जैसे कि आप लोगों ने मेरे पसंद का सॉन्ग सुना होगा, और जो कि न्यूली सॉन्ग होते हैं या कोई भी ऐसी बहुत टाइम बाद जो हम नहीं चलाए होते तो वो हमेशा आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे और सारे लोग मौजूद हो गए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे तक ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सवाल का जवाब

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Dia Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular Mitti Jo.
7: अब ठहरा जी हिमायत करने नतीजा भोगना पौधा ईरान जे कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी चयो आए त मुतालबन जे मंटा तई अमेरिका सां गालियों न थींदी। हुसैन जा सऊदी अरब ते हमला जारी वधीक बजणा जख्मी मस्जिद इमारतुनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान पहुतो। सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में यमनी हुसैन जे मिज़ाइल हमले में बजणा जख़्मी थी पिया। सऊदी अरब जे सिविल डिफेंस तर्जमान जो चवणु आहे त शहरी हंधनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भंकड़ी आहे। कराचीअ में फोर्सिस जी कार्रवाईअ में फितनल खारजीन जा ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। शेरशाह में सीटीडी ऐं रेंजर्स अहलकारनि सां फायरिंग जी ॾे वठि में हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सीटीडी ऐं असास इदारनि जे अहलकारनि जो जमाली पुल भरिसां दहशतगर्दनि सां मुक़ाबिलो थियो। पुलिस ऐं रेंजर्स ते हमलनि में मुलविस हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। इराक पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ लाचिंग पेड न बणजंदो। इराकी वज़ीर आज़म चयो आहे त पंहिंजे सरज़मीन तां पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ कंहिं बि सरगर्मीअ खे रोकियो वेंदो। पंहिंजे सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण न ॾींदासीं। असांजी सलामतीअ खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश अवाम जे इतिहाद साम्हूं नाकाम थींदियूं। मुस्लिम लीग नून पारां पंजाब में बलदियाती चूंडियूं कराइण में तयारियूं शुरू करे नून पंजाब जे सदर राणा सनाला जी सदारत कई वई। इजलास में नवनि सूबनि बाबति बि ॻाल्हि कई वई। धाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजलीअ जो ब्रेक डाउन। कराचीअ खे पाणी फरहमी मुतासिर। बिजली बंदि थियण सभी डिफेंस क्लिफ्टन समेत ॿियनि इलाइक़नि खे फरहमी बंदि। पाणीअ जी फरहमी बंदि थियण करे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणीअ जो बहरान पैदा थी वियो। शहरी तकलीफ़ुनि जो शिकार वाटर बोर्ड इंतिज़ामिया जो चवण आहे त के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबबि सुबुह 6 वॻे जो ब्रेकडाउन थियो। बिजली बंदि थियण सबबि धाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 पंप बंदि थी विया आहिनि। लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तक़रीबन 9 सूबनि जी मुखालफ़त। ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर। तक़रीब में मज़हर अब्बास, इफ्तिखार आलम, नसीर मेमुन, जामी चांडियो, ख़ालिद खोखर, मोहम्मद खान अबड़ो ऐं ॿिया शरीक। संदन चवणु आहे त मुल्क में सूबनि खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि डिफेड़ पेरा करे रहिया आहिनि। सूबनि खे टोड़ण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद ख़तरे में पइजी वेंदो। सूबनि खे टोड़ण वारनि ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िले सतह ते इख़्तियार ॾिना वञनि।
8: इस दफा पुराना तो नया लो की भी ऑफर है, यानी कि अपना पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लो, आना कायम।

0: 12 और 13 सितंबर हफ्ता इतवार के दिन सुबह 12 से रात 12 तक
1: जूनागढ़ मुस्लिम गांची कम्युनिटी
2: क्राइम दीन चांडियो पिस्टल जा फायर करे 14 वरन जी फातिमा के कत्ल कयो आए नींगरी जो लास्ट पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले मर घर पहुंचने ते कोहराम मची वियो। नवाब वली महमद में नौजवान की गुमशुदगी खिलाफ एहतजाज करते काजी अहमद एक्शन कमेटी के अगवाणन समेत 49 जणन खिलाफ केस दाखिल। नौजवान उमेर जूने के गुमशुदगी खिलाफ थाने आडो एहतजाज किया। एहतजाज कंदड़न मथा बचलपुर थाने ते 34 सुनातलन समेत 49 जणन खिलाफ ड्यूटी अटका जो केस दाखिल किया, जडे 8 जणा गिरफ्तार।

0: जहाज में जावा समुंड में सफर कर रहे हो त अख़्तियारनि जो जहाज सां राब्तो कटिजी वियो। इंडोनेशिया जे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिस जो चवणु आहे त जहाज जे ॻोल्हा लाइ कार्रवाई शुरू कई वई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा, तो बिल्कुल चलाएंगे जी। आप लोग आप हैं कौन, आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम मुझे जरूर बताइएगा यार। आपने मैसेज तो मुझे दोनों कर दिए लेकिन मुझे नाम जरूर बताएंगे आप हैं कौन, तो हम आपको सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे।

अच्छा यकीनन आप लोगों ने तो भैया अकेले अकेले नाश्ता भी कर लिया होगा, और मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आप लोगों ने चाय शाय पी भी ली, और मुझे पूछा भी नहीं कि मैडम आपने चाय पीनी है कि नहीं पीनी, मैंने कौन सा आपके पास आ जाना था, आपने तो बस नाराज हूँ मैं आपसे।

अच्छा जी, यहाँ पर जो हमें ओएसटी सॉन्ग के लिए कहा गया है और उनका जो जवाब है, मैं अपने सवाल का आपको जवाब देने लगी हूँ। ओके, तो जी मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा जवाब, मेरा सवाल था, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने जस्ट इतना बताना था कि अगर सुबह में एक मुर्गा अंडा दे रहा है तो हम कितनी देर तक खा सकते हैं। अच्छा, दो और कमेंट्स हैं, पहले वो भी रीड आउट कर लेते हैं। ओके जी, तो जवाब सवाल किसने हमें मैसेज किया, ये कहते हैं कि जलोड़ी से खाली करके सारे जवाब देते हुए कहते हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। हे गाना, हम तो तेरी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ओके जी, जरूर जरूर, कसम की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही आ जाएंगे, आप बुलाएं तो सही। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसके अलावा एक और हमारे साथ मौजूद हैं कि कहते हैं कि शक्कर गुड मॉर्निंग, हाय आरजी सुना, प्लीज प्ले सॉन्ग पहली दफा, सिंगर आतिफ असलम, पहली दफा। अच्छा, दीदी अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था, ये मैं देख लेती हूँ कि आपने जवाब दिया था या नहीं, लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपका सॉन्ग भी हम प्ले जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि दो घंटे होते हैं हमारे पास, हम उसमें मजे मजे के सॉन्ग भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लास्ट वाले ओवर से मुझे बता रहे होते हैं तो यार टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा ही शॉर्ट होता है। तो हम किस किस के सॉन्ग प्ले करेंगे, आप लोग मेरे सवाल इतना आसान होता है, जवाब ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, मेरा सवाल था आप लोगों से ये कि आप लोगों ने बताना था कि जो एक अगर सुबह में मुर्गा अंडा दे रहा है तो हम कितने देर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी ने बोला कि 5 मिनट, किसी ने बोला 3 मिनट, किसी ने बोला कि भाई इसका जवाब हम आपसे राइट सुनेंगे और जवाब तो हमने दे दिया है, किसी ने बोला कि कुछ देर तक और कुछ कंफर्म नहीं है। तो जी, और किसी ने बोला कि मुर्गा अंडा कब देता है, और किसी ने बोला कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। ओके जी, तो मैं आपको उसका जवाब बताऊं कि आप लोगों ने मेरा सवाल तो सुन लिया, आपने टाइम तो देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि मुर्गा वाकई में अंडा नहीं देता। अच्छा, ये देता जो हम उसके बाद लोग दुकान देखो इतनी तादाद में अंडे होते, क्या वो उससे 3 घंटे में खत्म कर देते हैं, 4 घंटे में? नहीं यार, वो 5 दिन में भी खत्म नहीं हो पाते। तो ऐसे ही जी कि मुर्गा तो अंडा कभी देता ही नहीं है, तो फिर अंडे का टाइम क्या करेंगे जब अंडा ही नहीं है। तो जी, आप मुझे ये तो बताएं कि थोड़ा दिमाग से आप सोचा करें, मेरा सवाल होता है बहुत आसान, लेकिन नकल के लिए भी अकल, मैंने पहले कहा था, जरूरी होती है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी नहीं समझा। तो जी, अभी जिसके जवाब ठीक है तो हम उसका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे जवाब दिया और आपको इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता है ना। तो ऐसे ही है जी, और यहाँ पर हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं जो कि मुझे भी पसंद है और यहाँ पर फरमाइश भी की गई है, लेकिन नाम नहीं पता कि किसने फरमाइश की है। भाई, मैं आपका पसंदीदा सॉन्ग चला रही हूँ, जरा मुझे नाम लिख के तो बताएं कि आप हैं कौन, आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है, जिंदगी आवार की है अगर ये सॉन्ग सुन रहे हैं तो, क्योंकि मैं चलाने वाली हूँ ये सॉन्ग और आप लोग सुनेंगे, तो जरूर मुझे बताएं कि आप ये कौन है, किसने मुझे कमेंट किया था, किसने मुझे मैसेज किया था, ताकि हम नेक्स्ट शो में भी मजे मजे के सॉन्ग सुन सकें और ऐसे ही इंजॉय कर सकें। और आप लोग मुझे टाइमली प्लीज ज्वाइन किया करें, ताकि ना अगर हम लोग मजे मजे के सॉन्ग सुनेंगे तो वो टाइमली हम लोग सुन सकें। तो ठीक है, यहाँ पर करती हूँ मैं प्ले, तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप हैं कौन, तो करते हैं सॉन्ग को इंजॉय।

0: तो जी सुन रहे थे हम लोग जिंदगी अवार की है जो मस्टी का ड्रामे का ये ऑस्ट्री सॉन्ग था। तो जी बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग है और मुझे तो बहुत पसंद है जी, मैंने प्ले कर दी। लेकिन आप मुझे जरूर बताएं जिसने मुझे सॉन्ग कमेंट किया था कि आप कौन है, आपने मुझे कहाँ से ऐसे मिस किया था कि मुझे और सुनने वाले को पता चल सके आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ है, आप कौन है। तो जी जरूर मुझे बताइएगा कॉमेंट में, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपका इंतजार। और उसके अलावा हमारे पास और भी फरमाइशी सॉन्ग है जो कि मैं प्ले करने लगी हूँ। चलो करते हैं प्ले। कौन सा प्ले करना है अभी इसके अलावा? चलें हम लोग यहाँ पर प्ले करते हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो क्यों ना ये सॉन्ग सुनते हैं। तो आइए मैंने कर दिया ये सॉन्ग प्ले।
1: 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार उस वक्त मेरा सेंस हुआ।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पॉटलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फातिह मेहरान.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: एक्सेंट के हो तो आवाज भी से एफएम नेटवर्क,
1: जी एफएम 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

जे के नाम से जानते हैं, पूरा नाम जयपल है कराची से। तो जी थैंक यू सो मच जयपल, आपने मुझे मतलब ज्वाइन किया है और ऐसे आपने अपने राइट आंसर भी दिया था, तो आपका सॉन्ग भी प्ले किया हमने। सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, जो कि मेरी पसंद थी वो आपकी पसंद भी हो गई। ओके, और इसके अलावा मैं आपसे जो अली मोरत से थे वो कहते मियो नहीं, मैंने मियो नहीं बोला था, मैंने बोला था अगर आप मेरे पर खांसे हो सकते हैं, क्योंकि मोरत का आपने बिल्कुल वैसे ही मोरत शॉर्ट फॉर्म में है तो आपने और छोटा कर दिया था उसको, जी पता नहीं चल रहा था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा लगा था मोहम्मद अली कि आपने मुझे ज्वाइन किया, तो ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहने ऑनली ऑनली ऑन संडे सुबह के से तो पेरे 1 बजे तक रहता है मेरा और आपका साथ। उसके अलावा जयपल कहते हैं कि हमारी बात सही है कि मुर्गा अंडा नहीं देता, जी बिल्कुल ठीक, जब हमने आपका सॉन्ग भी प्ले किया था। और साथ में कहते हैं कि आपका शो संडे संडे को होता है, हम ट्राई करेंगे ज्वाइन करेंगे शो। और ओके थैंक यू अगेन, थैंक यू जी वाले, जी जी बिल्कुल आप मुझे जरूर जो है ज्वाइन करिएगा संडे संडे को, मैं होती हूँ आपके साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए। और क्या बोल सकती हूँ, और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि साथ में कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सॉन्ग जो है वो वेरी वेरी मच वाला, अच्छा जी थैंक यू, ओके कहते हैं सॉन्ग प्ले किया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ऐसे ही अगर आप लोग मुझे टाइमली जवाब दे दिया करें तो मैं आपका सॉन्ग पहले ही प्ले कर लेती, लेकिन आप मुझे जो है ना देर से आपने ज्वाइन किया। और साथ में कहते हैं दूसरे एक और बंदा हमारे साथ ज्वाइन है, कहते हैं कि शक्कर से विनोद कुमार, जी विनोद कुमार कैसे हैं आप, और आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है और थैंक यू सो मच, लेकिन आपने ज्वाइन तो किया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने अगले इतवार को मुझे टाइमली ज्वाइन करने आए हैं और मेरे सवाल को सुनना है और जवाब भी देना है विनोद कुमार, तो ताकि मैं आपका वेट करूंगी और मुझे आपका नाम भी याद रहेगा। तो देखते हैं कि आप अगले इतवार को मेरे पास किस टाइम तक ज्वाइन कर लेते हैं और मेरे सवाल का जवाब देते हैं भी हैं कि नहीं, तो ठीक है मुझे ज्वाइन जरूर करिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास टाइम हो गया है बिल्कुल टाटा बाय बाय करने वाला, क्योंकि अभी सिर्फ 5-6 मिनट बचे हैं जिसमें लास्ट में एक और फॉरमाइट सॉन्ग हमने पूरी करते हुए जानी है, फौजी सरमो के आवाज में जो है वो एक सॉन्ग प्ले करते हुए जाऊंगी, आप लोग एंजॉय करिएगा, मैं भी एंजॉय करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद मिलेंगे अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ, तो जी टाइम को तो देखते हुए भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि

हाफिज करने का टाइम आ गया है। और इसके अलावा अगले इतवार को मिलेंगे नए सवाल के साथ, और थोड़ा सा दिमाग चला के जवाब दीजिएगा। और कोई बात नहीं है, थोड़ी सी नकल के लिए भी अकल के लिए अकल की जरूरत है, ये मैं दोबारा कहते जा रही हूँ आपको। तो जी, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा ये सॉन्ग मैंने कर दिया है प्ले, इस सॉन्ग को भी सुनते हैं और मिलते हैं फिर अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू।

0: मौसम गर्मी का हो या बड़े
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
5: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: ईरान के कशम बेट से व्यापारी जहाज से हमलो हमले में एक जनो मार वो टे जना जख्मी ईरानी सदर मसूद पज़िशान खिते के सभी मुल्क के गजी अमन अमान कायम करण घुर्जे अमेरिका में हिम्मत आए तो ईरानी फौज के मुंह डे असा के दबाव ए धमक से झुकाय न तो सकजे अमेरिका जारियत बंद करे तो आबनाय हुरम्स खुली वेंदो आबनाय हुरम्स बाबत सूमर से ओमान से मुआदे से सही कई वेंदी हुसैन जा सऊदी अरब से हमला ब जणा जख्मी मस्जिद इमारतों ने गाड़ियों के नुकसान पहुंतो सऊदी अरब के शहर जाजान में यमनी हुसैन के मिजाइल हमले में ब जणा जख्मी थी पिया सऊदी अरब के सिविल डिफेंस के तर्जुमान चवण आए त शहरी अंदन के निशानो बणायण आलमी कानून की भंकड़ी आए कराची में फोर्सिस मार्जिन जा ब दहशतगर्द मार वया शेरशाह में सीटीडी ए रेंजर्स अहलकार से फायरिंग की डेवट में एक दहशतगर्द मार वो सीटीडी ए हसास इदारन के अहलकार जमाली पुल भरसा दहशतगर्दन से मुकाबलो थो पुलिस ए रेंजर्स से हमले में मुलविस एक दहशतगर्द मार वो इराक पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ लॉजिक बेड न बणजन इराकी वजीर अजम है पांजे सरजमीन ता पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ कें भी सरगर्मी के रोको वेंदो पांजे सरजमीन पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ इस्तेमाल थियण न डींदी असांजी सलामती के नुकसान पहुंचाने की कोशिश अवाम के इतिहाद सामू नाकाम मुस्लिम लीग नून पारा पंजाब में बलदियाती चूंडू कराने जो तैयारियों शुरू करने जो फैसलो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राणा सनाला की सदारत हेठ इजलास थो पार्टी अहदेदार चूंडन की तैयारी की हिदायत कई इजलास में नवन सूबन बाबत भी गाल कई वही धाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो ब्रेक डाउन कराची के पानी फरहमी मुतासिर बिजली बंद थियण सबब मलीर लांडी कोरंगी डिफेंस क्लिफ्टन समेत बेन इलाक फरहमी बंद पानी के फरहमी बंद थियण करे मुख्तलिफ इलाक में पानी जो बहरान पैदा थी वो शहरी तकलीफन जो शिकार वाटर बोर्ड इंतजामिया जो चवण है के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबब सुबह 6 वगे बिजली जो ब्रेक डाउन थो बिजली बंद थियण सबब धाबे की पंपिंग स्टेशन जहा 21 मां 10 पंप बंद थी विया आहिनि लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारा तकरीब मुनक़द नवन सूबन की मुखालफत जिलन के इख्तियार डण की घुर तकरीब में मज़हर अब्बास इफ्तिखार आलम नसीर मेमण जामी चांडियो खालिद खोखर मोहम्मद खान अबड़ो ए बिया शरीफ संदन चवण है तो मुल्क में सूबन के ट्रोण जो गालियों कंदड़ डिफेड़ पखड़े रहा है सूबन के ट्रोण से पाकिस्तान तरक्की तो न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद खतरे में पेजी वेंदो सूबन के ट्रोण वारियों गालियों कण बदरां जिले सतह से इख्तियार डना वजन

सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इम्कानी बरसातुनि सबबि एडवाइज़री जारी करे छॾी। सूबाई सलाहकार ज्ञानचंद इसाणीअ पारां पीडीएमए ऐं रेस्क्यू डबल वन हाई अलर्ट करण जो हुकुम ॾिनो आहे। संदसि चवण आहे त मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में 13 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति जो इम्कान आहे। कराची डिवीज़न में बि 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं बरसातुनि जो इम्कान आहे। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, ठटो, सजावल ऐं बदीन में खिवण सां तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। सांगड़, मटियारी, खेरपुर, नवाबशाह, टंडोल अयार ऐं ॿियनि शहरनि में हल्की बरसाति जो इम्कान आहे। जॾहिं त हेठाइनि वारनि इलाइक़नि में बरसातुनि ऐं हसास हंधनि ते निगरानी करे पाणी नेकाले जा इंतज़ाम कया वञनि। जमायत ख़िलाफ़ छटीहनि सां जारी जमायत हाफिज़ नईम चयो आहे त हिन मुल्क में हिकु अछराफ़िया ग्रुप आहे, उटे रहियो आहे। 20 सेप्टेम्बर ते सॼे इस्लामाबाद मां माण्हू ईंदा, अवाम पेट भताखोरी टैक्स करार ॾेई छॾियो आहे। धरणनि में माण्हुनि जो तइदादु हर गुज़रंदड़ ॾींहं मां वधी रहियो आहे। पेट्रोलियम लेवीअ जो पेट्रोल जी क़ीमत न आहे। सिंध पुलिस में सिपाहीअ जी भर्तीअ लाइ टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो हैदराबाद में एहतजाज। उमेदवारनि जो चवण आहे त सॼे सिंध जा 1400 उमेदवार ॿिनि सालनि खां अफराट न मिलण ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। लाॻापियल इख़्तियारनि हैदराबाद जे 800 उमेदवारनि समेत ॿियनि ज़िलनि जे नौजवाननि खे आर्डर जारी नाइन कया। मियां साहब वेझो ॻोठ मुंदोवा में कारा इल्ज़ाम हेठि चाचे हथां नींगरी क़तल। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार क़ाइमदीन चांडियो पिस्तल जा फायर करे 14 वरनि जी फातिमा खे क़तल कयो आहे। नींगरीअ जो लाश पोस्टमार्टम बैदि वारसनि हवाले कयो वियो आहे। मड़ घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। मदे जी भरिसां ॻोठ फ़क़ीरपुर बिरोईअ में गुज़िरियल ॾींहुं कार में सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में क़तल थियल नौजवान सादिक बिरोईअ जी जनाज़ नमाज़ अदा कई वई। जनाज़ नमाज़ में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि जे अॻवाननि जी वॾे अंग में शिरकत। मक़तूल जो मड़ अबाणे क़ब्रस्तान में मिटीअ मां हवाले।

0: दौड़ में पुलिस जे मुबैन आज़ादियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज, रोड बंद, ॻोठ गुलमला ऐं बाकर शाह जे रहवासियुनि मला बिरादरीअ पारां पुलिस जे मुबैन आज़ादियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस राति देर सां अधरोड शख़्स खमीसो मला खे विच शहर में बिना कंहिं ॾोह जे वहशियाणो तशदुद करे मरणी करे छॾियो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम कयो वञे। भान सैदाबाद में चोरीअ जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार पोरियत मथां पुलिस जो मुबैना तशदुद, पोरियत जी हालत ख़राब, इस्पताल मुंतक़िल। पोरियत नदीम खासकिलीअ खे पुलिस तारूं चोरी करण जे इल्ज़ाम हेठि 5 ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयो। वारसनि मूजिबि पुलिस वहशियाणो तशदुद करे पोरियत खे मरणी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। कुनरीअ में पिथौर जी पाइप लाइन मनसूबे ऐं मिठड़ाउ केनाल ते मुबैना धाड़े ख़िलाफ़ सवें आबादगार रोडनि ते निकिरी आया। अॻवाणनि चयो त पिथौरो वाटर सप्लाई पाइप लाइन जे मनसूबे जो असर मिठड़ाउ केनाल जे टेल सब डिवीज़न ते पवंदो। इहा पाइप न पूरी शाखा आहे। पाइप लाइन सां केतिरा इलाइक़ा बंजर बणजी वेंदा। बचंदो सूबो फोरी। ऐं इंडोनेशिया में 200 मुसाफ़िरनि सां भरियल मुसाफ़िर बहरी जहाज गुम थी वियो। परडे॒ही मीडिया मूजिबि मुसाफ़िर जहाज में जावा समुंड में सफ़र करे रहियो हो त इख़्तियारनि जो जहाज सां राब्तो कटिजी वियो। इंडोनेशिया जे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिस जो चवण आहे त जहाज जी ॻोल्हा लाइ कार्रवाई शुरू कई वई आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ

0: पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतियाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: छोरी वेंदा मोरी
1: न हुंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो ऐं न ताकत मिलंदी
2: त तो मां छा कयां
1: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो भुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट पोखजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
3: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
1: इहो मिल
4: तो मौजूदों के बादशाह से है तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है फिर क्यों परेशान हो तुम्हारे पास तो अल्लाह है सिनेब दंदन तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समाधान के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम दुआओं के संबंध है चाहतों की बारिश उल्लासवल खजानों के साथ हुआ है पलसी पलक से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात मी से डॉक्टर समी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तरह तरह से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क यहाँ पर हमारे साथ मौजूद ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़ीखाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डीज इन ब्यूटी शो हाँ जी जनाब व्हाइट एज एंड डीज इन ब्यूटी शो के जानिब से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है जिसमें आप लोगों को हम बताते हैं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल किस तरह रख सकते हैं क्योंकि वैसे भी ये चीज बड़ी नॉर्मल सी हो चुकी है कि खूबसूरती का ख्याल रखना जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई आसान सा काम हो चुका है वैसे तो ऐसा होता था पहले के दौर में जबकि लोग बहुत ज्यादा अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं उनके पास इस तरह के बहुत सारे वसीले नहीं होते थे जैसे आज के दौर में पाए जाते हैं बस आप लोगों के पास जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी खूबसूरती में जो है ना निखार आ सकते हैं और वो वाली खूबसूरती हासिल कर सकते हैं जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के साथ हम प्रोग्राम के अंदर जिक्र करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आए हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम की आजकल चर्चे चल रहे हैं पहले इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप इस चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना चाहते हैं थोड़ी सी हो या फिर ज्यादा सी हो क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करें तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में मालूम पड़ने वाले हैं इसी के साथ साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आरजे एंड यू डीजे सिद्धराम मुस्कान नाम तो सुना ही होगा बिल्कुल जी आपकी सिद्धराम के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए चलिए जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए एंजॉय करने के लिए और सुनने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं और यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है खूबसूरती के राजों को जानने के लिए बेताब हैं तो जनाब आपकी बेताबी को दूर किया जाएगा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो कैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे और क्या तरीके कार होने वाले हैं जी प्रोग्राम में जल्दी क्या है मौजूद होते हैं अपने कामों के दौरान यानी कि फ्री होकर हमारे के दौरान सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए सुनीली हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सतराली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाने के लिए तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम करेंगे जी हम हमारी लिस्ट में एक बहुत प्यारा कसीदा मौजूद है तो आइए जरा कसीदा सबसे पहले एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
1: की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

चीजें तो होनी ही चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है, ये फला इंसान को इस प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम लगाएंगे तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी और के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो उसकी स्किन के ऊपर कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग अलग होती है। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो आप थोड़ा सा जो है ना वो हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसे अवॉइड किया करें। ऐसा नहीं कि बस कोई भी प्रोडक्ट बता दिया उसके ऊपर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसा किया करें, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मीडियम और होने की वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, और ये जो चीजें होती है ना जैसे विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट से जिनके अंदर पाई जा रही है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फाबोटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटा, ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। वैसे कहते हैं ना जो अच्छा आप महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप देखते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन जब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा के आती हैं, और फेशियल कराने के बाद जो उनके चेहरे पर ऐसे आपको लगता है ना कि निखार आ चुका है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि आपको इस तरह का निखार देती है कि जैसे आपने फेशियल किया हुआ हो। ये एक नाइट क्रीम है जैसे आपका टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, और आपको बहुत से भी बहुत अच्छा वाला निखार भी मिल जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, ये बात हो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर देना, ये जो होता है ना ये चीज हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाते, और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर आपको रिजल्ट ना मिले। इतना अच्छा इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आजकल हर कोई चाहता है ना कि जैसे भाई उनकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, बेदाग हो, गोरी हो, लेकिन उसके लिए ये भी हो जाता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, और ये हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल जी, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने रोजमर्रा स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप रात को सोने जाएं तो कुछ ही जो पल होते हैं, ऐसा होता है कि भाई मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पास चलें, अगर आपके पास दिन में कोई भी टाइम नहीं है तो शाम में रात में आप थोड़ा जो ना 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि ये इनफ टाइम होता है अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करने के लिए और एक ब्यूटीफुल सी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करने के लिए। ये 4 से 5 मिनट बहुत काफी होंगे। ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपके पास इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती के। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अपनी स्किन को जरा पहचानिए, उसे क्या चाहिए, आपकी स्किन को जैसे आपकी बॉडी को खाने पीने की जरूरत होती है वैसे ही आपकी स्किन को भी भाई प्रोडक्ट की और अच्छे प्रोडक्ट की नीड होती है। तो बिल्कुल वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई बिल्कुल सेफ है और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज की जा रही है। जनाब इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं कहीं पर मिल रहा है, वैसे हर जगह पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने करीबी जनरल डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर नहीं, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर आपके लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, चाहे आप हमें सखर से सुन रहे हैं, मोरो से, मिरपुर खास से, मटियारी से, सकरण से, मेहरापुर

फिर 92 नूरिया बाद से या फिर लाड़काना की समाते हैं तो हर जगह आपके लिए टी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए. बस इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को जरा पहचानिए आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं. ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी वो वाली खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे. ओके जी, मर्द हज़रात, ख़वातीन, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जा रहे हैं. और जल्दी जल्दी से हमें भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानते हैं और पहले से इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी 3 महीने प्रोग्राम करके जा चुकी हूँ दोबारा से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होंगे. ओके जी, सो जल्दी से मेरे साथ शेयर किया करें. वैसे भी कहती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग होती है. और फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जी पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें. कंजूसियां किस बात की. और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए आपको ऐसा मतलब चांस मिल जाए फ्यूचर में जाने का, आपको मौका मिल रहा हो, सिर्फ आधे घंटे के लिए आप अपने फ्यूचर में जाएं और देखें कि भाई आपकी क्या हालत है, आपके हालात अच्छे हो चुके हैं या बुरे हो चुके हैं, तो आप जाकर देखेंगे फ्यूचर में. आप मुझे बताएं, जब आप अपने फ्यूचर में जाएं तो अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये मैं फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखना चाहूंगा. अब पर ज्वाइन करते जाइए. ओके जी, आपके लिए गाने लगाते हैं, बहुत अच्छी चीज जो हमारी लिस्ट में मौजूद है. और आप लोगों से बातें करते हैं, आपके मैसेजेस जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं, चाहे वो कमेंट्स हो चाहे वो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जान भी आते हैं. आपका हमारे साथ 3 बजे तक का होगा. आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. Baby, you a rock star.

सारे साथी यहाँ पर गुलाम, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक है? और बाकी सारे लोग ठीक है? अच्छा, सब लोगों से पूछ रहे हैं, सही है जी, कहते हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और फहीम भाई लिखते हैं कि मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे अख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश से वही। अच्छा, ये टॉपिक अगर मुखे फ्यूचर मौक्यो मिले खां पहरी ही दिसा हां त तू अन्या घणा दफा दर बंद कंदी। बाबा ये सांजे समय त गाल हुंदी ना है ना, असा पाण एकडा छा चवा हाने नौकर मानू आयो नौकरी कंदा आयो तो असन जी सगोता।

हैं जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके खूबसूरत बनना चाहते हैं, नहीं ना मत कीजिएगा क्योंकि न जेका ना निभागो कर जी स्किन ब्यूटी फार्मूलो है मेडिकेटेड फार्मूलो माना है ना कि जेके स्किन वाला डॉक्टर हूं ना उन्हें तैयार कयो है उन्हें जो फार्मूलो है सो तुम बेफिक्र थी करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको ता चाहे तुम्हारी स्किन सेंसिटिविटी छू न हो।

0: बस सुन लेते हैं
1: गुलखणी सब भी हो अचड़ो आ प्यारो गुलखणी सब भी हो।
0: अच्छा सलाम अलैकुम। ओ सलाम।

क्या बात है, बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर चांद पे पहुंचने वाला था, अचानक जहाज का टायर पंचर हो गया। नींद से जा गए होंगे मुझे ये लग रहा है। और जी हमारे साथ है यहाँ पर फहीम भाई, लिखते हैं कि भाऊ रेशम गली में दुकानदार ऐसे हैं, मांगो वो क्रीम उनके पास से, कहते हाँ बिल्कुल असम रेशम गली वेदा असा के खबर आए तरी ने तांगे दसी नहीं आना तो बाबा इन चीज। अगर दुकानदार तवा सा भी ठगी करे तो उनके चोस बाबा सीधी गाल कर न थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो घुराए वो बाबा, बाकी असाके गुमराह न कर डाटा गुमराह थे हलो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो बाबा इस्तेमाल करो, खूबसूरती जो ख्याल रखो।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोस्ट को लाइक शेयर कर रहे नहीं। अच्छा, ये हमारे सारे मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली, मीर बहर, अब्दुल खालिक सियाल, सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और एम अली मोरो सिटी से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा मुस्कान डी स्किन की क्या बात है, हदीका ज्ञानी का सॉन्ग तो सुनाए, हाजिर हाजिर बिल्कुल बुधराई था। और हमारे साथ जयपाल भाई कहते हैं कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर सारे फूल गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम जरूर है मगर जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ, बिल्कुल ये हुजन गुरजो।

यहाँ पे क्या है वापस आकर बताती हूँ मैं और यही आप रहिएगा. टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है. वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए. मैं जरा यूँ जाकर यूँ वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड टेस्ट इन ब्यूटी शो. सुनते रहिए और हमारे साथ रहिए.

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: फॉर्म या सेमिनार में सुबह वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो अवाम नवा सुबह चाहे तो केर ब्रोके न तो सके पीपल्स पार्टी सुबह वारे मामले ते जरूरत खां वधिक रदे मल दिनो आए

0: हिते टर के काला बाग डैम ठाहिण न ॾिनो त सिंध जो विरांगो कीअं थियण ॾींदासीं। सूबनि जूं ॻाल्हियूं करण बंदि कयो न त एम आर डी जहिड़े तहरीक शुरू थी वेंदी। पी पी सिंध जे सदर निसार खोड़े जो के एन शाह में एम आर डी जे शहीदनि जे वर्सी तकरीब ख़िताब। निसार खोड़े चयो त कुझ माण्हू असांखे काक्रोच पिया चवनि, जेकॾहिं काक्रोच निकिता तव्हां रही न सघंदा। सिंध जो विरांगो कॾहिं बि मंज़ूर न आहे। सूबनि खे अख़्तियार ॾेई ख़ुदि मुख़्तियार बणायो वञे। सिंध जो अवाम विरांगो नथो चाहे।
1: चार महीनों से चल रहा है, आपने देखा होगा बजट इजलास में भी एक

नहीं कर सकेगा, लेकिन ये जो खाया है वो कब्जा किया है कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें। ये आपके इस रेजुलेशन में गुम न करें कि जो आपने देश किया है, समय में वापस करें, तो हमारा लैंड वापस करें।

0: सिंधी कौम परस्तनि वकीलनि ऐं साजा वदन पारां सिंधी वहदत ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशुनि खे नाकाम बणाइण जो वचन। सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बज़ुर्ग कराची में सेमिनार खे ख़िताब कंदे सैयद ज़ैन शाह चयो त मूं बि वतन सिंधी कॾहिं बि सिंध टोड़ण न ॾींदा। अमां ठहराउ वारो ड्रामो करे करप्शन जो हिसाब किताब गुम नथा करे सघो। सूबनि जे घणी आमदनी वारनि शयुनि ते वफ़ा कब्ज़ो करे वेठो आहे। पोर्ट सिंध खे वापसि कयो। पंजाब जे लखनि एकड़ ज़मीन आबाद करण लाइ सिंध खे बंजर बणाइण जी साज़िश थी रही आहे। कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाए चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहद आहिनि। सिंध बार काउंसिल जे सदर अब्दुल हसीब जमाले चयो त सिंध पाकिस्तान जे क़याम लाइ किरदार अदा कयो जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त मोहसन नकवी मुल्क खे क्रिकेट वांगुरु सम्झी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा गैर संजीदा ऐं नवां तजुर्बा करण बदिरां मसइलनि जो हल ॻोल्हियो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: हो तो आवाज रहो जीए 1.6 से सुनते रहो जीए 1.6
2: खबरी खुश खबरी कांचना जी काबिन भी बीमारी में मुब्तला थी वही आहे तो उन बीमारी जो हैदराबाद शहर में सिंध रहो आहे स्पैथिक क्लिनिक हैदराबादिक नेशनल पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसर्न सीनियर लेक्चरर नॉलेज ऐं हस्पताल न मरीजन जो चेक तरीके सां कंदा केतरा ई मथी चुका आहिनि सिर्फ़ 300 यूनिट में सहूलियत हर छंछर ताईं एड्रेस बदोट पुरानी सब्जी भी बैंक जे साम्हूं अत जे लाइ राब्तो करियो 3064000
3: जो आवाज़ कीजिए हरी FM 91.6 जो आवाज़

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.1 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। नाइट क्रीम के लिए आपने बस डेयर सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये फेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत है। अगर आप रहते हैं अपनी स्किन के साथ, आप दुश्मन का फेस वॉश इसके बिल्कुल अपने चेहरे को क्लीन करें, उसकी ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर और मोहब्बत से लगाइए, आपको मिलेगी कि आप हमेशा से डिजर्व करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर आप जरा इग्नोर करें तो ये कैसे चलेगा। तो स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, आप महंगे महंगे पार्लर नहीं जा सकते हैं, फेशियल्स नहीं करा पाते हैं, आप कभी नहीं जो है ना परचेज करेंगे जिसका नाम है क्रीम, और ये डब्बी आपके ऐसा जादुई सा असर हो जाएगा और एक मैजिकल प्रोडक्ट है। बस आप इसे लगाएंगे आपकी खूबसूरती आपको चुटकियों में मिल जाएगी, और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहने वाली है। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और पुरकशिश बनते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको वेलकम इन करें। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने एंट्रियां मार ली है और जितने भी लोग हमारे साथ हैं जनाब वेलकम। और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में जाने का चांस मिल जाए, यानी कि फ्यूचर में आप चलो, आप अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे कि भाई हम फ्यूचर में तो गए हैं लेकिन हम अपने लिए ये देखेंगे भाई हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, ये सब मिला या नहीं मिला देखेंगे या क्या देखेंगे, जल्दी से मुझे बताए से बनते जाइए। 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो फेसबुक आइकन शेयर करते जाइए, ऐसे आपकी मोहब्बतें जो नए प्रोग्राम से साबित होती हैं, तो मोहब्बतें दिखाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। बाकी आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, बिल्कुल जी यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं, तो आपके मैसेजेस हैं। और ये हमारे साथ हैं जी हमारी फजली, और फजली क्या कहती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं स्वीटी आपको भी, और कहती है कि सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कप स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके, सबको वेलकम कहते हैं आपकी तरफ से और आपको भी वेलकम कहते हैं अपनी तरफ से। जी हमारे सॉन्ग की आवाज गाना साबित लगे, और ये भाऊ लिखते हैं कि अच्छा भाऊ जी मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करूंगा अच्छा अच्छा, वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है। बहुत से लोगों की स्किन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी होती है ना, यानी कि सर्दियों में तो उनकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है लेकिन गर्मियों में बड़ी ऑयली हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, लेकिन इस टाइप के थे जो कि भाई हर मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर आपकी स्किन भी कॉम्बिनेशन टाइप है तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर मौसम में भी यूज की जा सकती है, हर यूज की जा सकती, इंसान यूज कर सकता है चाहे आप खवातीन है, तो बस इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। और कहते हैं कि भाऊ भाऊ पैनल ते नजर नजरे करम करी, नजरे करम है कॉमेंट्स की जाए, मैं तो कराची से सराता किया करें जी, नंबर दी हूँ बाकी। ओके जी, नंबर आपको बताने लगी हूँ, जल्दी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुरी 312 पंजाह पंचवी 4304 बुरी 3323 कासी ट्रेल करी पानी करी भी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था, चाहे तवा दुनिया के केड़े भी कोने में हुंदा तवा जिलाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा। अरे साथ ही मुंस का नाइस यो स्लो है, ये चीज मैंने भी जरा देखी है मीरपुर खास, जो कभी गाने की आवाज बहुत स्लो आती है, आरजे की आवाज बड़ी तेज आती है, तो थोड़ा जो ना रखे जी तो जरा ऊंचा कर दे, कुछ नहीं होता, और ये जरा सिस्टम का जो ना थोड़ा इशू है वाकई उनका, मुझे भी लगता है जब हम सुनते हैं जी मीरपुर खास का प्रोग्राम तो है उनके अंदर ये चीज। ठीक करें जी, आप आवाज को जरा तेज कीजिए, कुछ नहीं होगा, लोगों तक आवाज ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा लोग हमें सुन पाएंगे। अच्छा, ये मुनव्वर भाई हमारे साथ है बॉस आपका, बाकी फेसबुक वाले लोग सोच रहे थे कि गाना

क्वालिटी आप सुन रहे हैं व्हाइट एच एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा किशोर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि बचपन में मेरे साथ ही बात है। वैसे एक चीज मेरे साथ ही हुई थी बचपन में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। तो हाँ ये आए जैसे मानो खुदा रूदा है, जैसे साफ दिल जमा रूदा ना, तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे ये लगता है। अच्छा सो अखलाक भाई को शायद नींद आ रही है और ये हमारे साथ हैं जी रिजवान अली। रिजवान भाई क्या कहते हैं, कल आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी। बिल्कुल जी आपकी फरमाइश मुझे याद है, आपका गाना लगाते हैं जी। हमें सुन रहे हैं, आपने हमें नाम पसंद आ रहा है बुक्टी फरवा। एहसन अली बुक्टी हमारे साथ है लाड़काना से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, आये हाय। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ना एक ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्म, अगर इस सेंसिटिव स्किन के साथ हो आप नहीं प्रोडक्ट यूज स्किन ब्यूटी क्रीम पे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। आपको समझ आया या अभी तक नहीं आया? आरटी किंग हमें सुन रहे कहते हैं राशिद अली शो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संडे वाले दिन कराची में अवेलेबल तबियत पूछने जाऊंगा, चलें जी अच्छी बात है। और आप जरा मालूमात कीजिएगा कराची में कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने की नीड है। वैसे जहां जहां पर आप रहते ना वहां पर तो करा ही दे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बाकी जो लोग जाएं तो वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से परचेज कर सके। अच्छा बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं। और यहां पर महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम को, कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद, वेलकम। और सी खालिद नोटकानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। मातली में बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं?

जी तसल्ली कर लीजिए, पूरे लाड़काना में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो आप भी बस कहीं पर भी जाइए, आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ नहीं भी मिल रही है, फर्ज कर लीजिए कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर है वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते, इसके ऊपर रब्ता करेंगे जो नंबर आपको मैं बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जयपाल भाई, कहते भाई नंबर तो ऐसे बता रही हूँ जैसे वो फ्री में दे जाएंगे प्रोडक्ट। नहीं, नंबर आपको याद हो जाए, बताती हूँ आराम से, स्लो स्लो बताती हैं।

अच्छा खालिद भाई जान, लबलोई अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम, भैया आप जाइए तो मालूमात लीजिए और वहाँ से अच्छे से पूछिए दो चार, और फिर जो आपको नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर दर्श भाई हमारे साथ ही शहर दड़ोखा हसनैन दर्श, सतार दर्श, वकार दर्श, सुशली भावन के चौथा भली करी आया। अच्छा जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे हैं। सही बात है, सारे लोग कराची जा रहे हैं।

असां भाॻ वारा आहियूं छो त डेज़ स्किन ब्यूटी क्रीम असांजी आहे. तव्हां बि भाॻ वारा थियो बाबा, डे स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजी करायो छो त वठी अचो, क्रीम इस्तेमालु कयो छो त तव्हां सुहिणा थी वेंदा. ये हमारे साथ जी तो अच्छा महर इरफान सियाह साहब कहते हैं, मैम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम डिग्री ओके जी डिग्री, बहुत शुक्रिया. पहलवान चांडियो भाई बात है, हेलो जी. ओके जी, सो यहाँ पर छोटे सी शॉर्ट, आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, अपनी जगह से नहीं हिलिएगा, ठीक है. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं बहुत ज्यादा और आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा। अगर आप भी हसीन बना खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमारे आ जाइए, आपको मालूम पड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए खूबसूरती और खूबसूरती हासिल करना कितना आसान काम हो जाएगा। वैसे तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वो वाली बात, दुकानदार बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखा कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये इसी नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं, आपके जहन पे ये चीज होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कभी सिद्रा क्यों इतनी बातें करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे सब लोग इस्तेमाल रही है। मगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, जो ये विटामिन ई बीट्स और वन क्रीम है यानी कि ये एक नाइट क्रीम से स्पेशल किया हुआ कि में अवेलेबल है, तो भाई क्यों आप चांस मिस कर रहे हैं, मौके पे चौका मारिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए भी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में आप शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत मजीद खास मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगा, आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। इतना खूबसूरत, इतना शानदार ये बस आपकी, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज भी आपको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में आपको रिजल्ट देना इस ब्यूटी क्रीम को, इस ब्यूटी क्रीम सूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करें तो आप जरा इन अच्छे के दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा दे कहते, कुछ मासूम लोग होते ना पढ़े लिखे नहीं होते जिनको नहीं होता पता, बस वो जाते हैं दुकानदार उनको जो भी बोलता है तो बस वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बे के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, डॉक्टर माई जो फोटो आए और जी तुम ऐसो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए उनके मथा एक माई जो फोटो है जो डॉक्टर आए तो समझी वनो ओ ही आ तो वो क्रीम जो सिदरा बुधाइंदी।

बिल्कुल ही सो इहा निशानी तव्हां यादि रखी छॾियो जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त माई डॉक्टर जेका आहे न जो फोटो ॾिसी करे वठिजो ठीकु आहे ऐं ॾाढी सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे पाकिस्तान में पाकिस्तान खां ॿाहिरि जी मिले थी तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे ऐं सॼे पूरे पाकिस्तान में अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे सो तव्हां ख़ुशि नसीब आहे तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहुती आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो वठो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो अच्छा तव्हां नंबर ते राबितो नथा कयो छू भला नंबर ते राबितो कयो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो अच्छा हुन खां अलावा हिकड़ी अदी मूंखे चयो न त मातली में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम त अदा हुनखे ॾसींदा मां त तव्हां फानी ऐं माती खान जनरल स्टोर आहे जंहिं ते तव्हां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था फानी जनरल स्टोर ऐं माती खान जनरल स्टोर ते तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थियल आहे मातली वारा वञी उतां वठी सघंदा ठीक आहे सो बाक़ी ॿिया बि कुझु जनरल स्टोर हूंदा जेके आराम आराम सां मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं सो इहे उहे जनरल स्टोर आहिनि जितां तव्हां वञी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था बाक़ी नंबर ॿुधाईंदी हलां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा त उहे नंबर आहे सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नंबर आहे उहो आहे 03-1250-25907-0312-50-5970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-273-38-4309 ॿुड़ी 32-73-84-309 बिल्कुल सही नंबर आहे हिन नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था मैसेज बि करे सघो था ऐं भाई साहब खे ॿुधायो भाई साहब असां वटि कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए वञो असां बि हणूं असां बि सुहिणा थियूं

ओके जी, हम लास्ट लिंक में आ चुके हैं प्रोग्राम की, तो सब लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद। फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ डॉक्टर जो नालो छाए, डॉक्टर माई जो नालो डॉक्टर आए, पराइन माई जो नाला न पसंद आयो। जो सही आहे माण्हुनि खे जंहिंखे थोरो बेवकूफ़ बणाईंदा आहिनि दुकानदार, उहे थोरो उन्हनि खां होशियार आहिनि। सही आहे। और यहां पर जी

अच्छा ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि ताल्लुक मोहब्बत का ही हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मकाम रखते हैं। जी जनाब, खुशी जी की तरफ से भी सलाम पूछ रही थी आपका, दीदी का शो ज्वाइन करते हो? मैंने कहा कभी कभी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा खुशी का बताओ, कैसी है? ठीक ठाक है, मजे में है। और ये हमारे साथ ही किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ लिखा है हाय, कैसी हो? जी हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कौन है और कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी जुलरी का खाले कलाशारी शो नाइसा सॉन्ग फरजाना परवीन जो बुधायो, फरजाना परवीन तांके बिल्कुल बुधराइंदा सी भाजू मोहब्बतवान पिणाए बुधायो तांटी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई या कोन। अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि चापे का फ्यूचर में जाऊंगा तो सबसे पहले कुछ देखना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो जो फेस पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है तो रिजल्ट चेक करूंगा जाकर। इतना फ्यूचर में जाएंगे बस ये देखने जाएंगे? ये तो आप वैसे ही अभी चुटकियों में देख सकती हैं, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा रिजल्ट है। जयपाल भाई कहते हैं कि वैसे भाव ट्राई करूंगा मगर पहले खुशी जी को यूज करवाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर, मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें। भाई रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले ही आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं, तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है? और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आप हमारे साथ हैं। ये हमारे साथ है सिद्रा जी, गुजरे पल वापस मिल जाए, पालताजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा भाई, सुरेश अकबर और कुंभर नवाब। अच्छा सुरेश अलग है और

0: पर कुंभर अलग है और नवाब ड्राइवर है और जी हुमेरा चना का गाना सुनना चाहते हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगी आपकी फरमाइश की। और फ्रॉम प्यार अली जरवार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बाजी आप कैसी हैं, हमेशा हंसी मुस्कुराती रहे बाजी।
1: पर बस चाहे
0: कोई इतने छो आता कोई इतने छो हर कहीं पांजो पांजो हिकड़ो जो है तो रीजन है। सो थैंक यू तुम मोहब्बतू आज तेने काबिल समझो पाया। यकीन जानो तो इलाही तकलीफ थी जैसे बिला वजह तवे मू तंग करना है। सो खैर इन गालन के तो डिठो वो बहरहाल तुम बुधा डी स्किन ब्यूटी क्रीम करें इस्तेमाल कर। और जी ये खालिद भाई हमारे साथ हैं जो हमें मातली से सुन रहे हैं। तो मातली में बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कहाँ से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप मातली में जाइए पानी जनरल स्टोर के ऊपर या फिर माती खान जनरल स्टोर के ऊपर, वहाँ पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये हमारे साथ है गुलजार हुसैन, कहते हैं बॉस भाई मैं भी आपको यही कहती हूँ अपने एरिया में ही विजिट किया करें, बताएं जरा, बताएं नहीं बल्कि पूछे लोगों से कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी। अपने दरवाजे से निकलें जो भी करीबी जनरल स्टोर है वहाँ पर आपके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाए। अच्छा फरवा फरवा तुम गाने की फरमाइश कई मां ॾिसां थी हली वियो त हलाईंदो न त पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। अच्छा पहलवान चांडियो भाउ तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे ऐं तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अचे पियो, सो थैंक यू सो मच। रमज़ान भाभी असांखे जॉइन करे चुको आहे, रमज़ान भाउ तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा फजीला कहती है कि टॉपिक में देखना चाहूंगी कि हमारी आरजे सिद्रा मुस्कान एफएम पर है या हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है रेडियो, क्योंकि आपकी वजह से तो सुनते हैं। यदि वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुने, आरजे खाला सिद्रा मुस्कान का शो सुने। अच्छा चलिए जी इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती रही है।

जी ओके बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि ये प्रोग्राम शाम के प्रोग्राम, ये गाना जो है वो शाम के प्रोग्राम में अगर फरमाश होता तो क्या ही हो जाता, लेकिन जयपाल भाई इसी प्रोग्राम में आते बोलेंगे मेरी मर्जी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि मैं हमेशा वो निखरती रही। आप चाहते हैं भाई चेहरे शाने स्किन सेंसिटिव, भाई हमारी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लगा चुके हैं आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, तो एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर देखिए, क्योंकि वैसे ही जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना बिल्कुल उन सब डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। चाहते कि इसके अंदर व्हाइट और माइक्रोबीट्स फार्मूला, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपकी नाइट क्रीम भी हो जाएगी और आपको मिलेगा ऐसा निखार जो कि महंगे महंगे फेशियल कराकर हासिल करते हैं, आपको मिल जाएगा जीरो थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े पैसों में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का हासिल करते रहिए और अपनी करीबी जन से बिल्कुल जी शाम जो दिलकश नजारा समुंड जो छोलियो किनारो तू वही मां किथे बियो गानो बुधनासी बस अलाए केंजो ये गानो हुंदो मां नक्यो बाबा नक्यो न त करी जन चढ़ियो न मुखे केंजी फरमाइश कोन लाईंदी मां मैं आई बाकी जी ना रीजन था मुखे छे मन शाम वाले प्रोग्राम में फरमाइश कजो बिल्कुल ताजा गाना लाईंदा सी। और एडवोकेट कामरान शाह को अस्सलाम खुशामदी कहते हैं भाईजान।

नंबर जिसमें सुन रहे सलाम जी वहाँ पर हिट से बहुत अगर ओके क्यों हिजाजला कहते हैं वैसे ये डॉक्टर अच्छा बिलाल लिखते हैं कि यूं मिलते हैं जैसे ना कोई जान ना पहचान नसीब अच्छा काम

स्किन के बारे में नॉलेज हो चुकी है पहले से ही। कामरान खान भाई लिखते हैं कि आजकल मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। टाइमिंग रिपीट करें, मेरी प्रोग्राम की टाइमिंग है जी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, काम करती हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओगरी जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते कितनी हसरत करने की कहते हैं कि सही है कुछ नहीं कहते

0: गयो।
1: भाई ये गाने चलाकर हम उन गानों की जो ना वाइब ले रहे होते। अच्छा शुएब मंगी भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत। वरी तास मुलाकात मुझे थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। तो पांजो ओ हिनो सरो ख्याल रखना। आई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कचो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम अथव, मजाक न अथव अला तव्हां इस्तेमाल करे ॾिजो, तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड क्रीम आहे ट्राई करे ॾिसजो। जो इलाही सरो ख़्याल रखो, माज़रत कयूं था बाबू। सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
5: brought to you by
6: Sona Yulia Granular.
7: उसके खोलण लाइ अमरीका के सत शर्त पेश करे छॾिया। रूसी मीडिया जो चवण आहे त ईरान टियाकरी कंदड़ मुल्कनि ज़रिए अमरीका खे शर्त पेश कया आहिनि। तहरान सूमर ते मस्कत में इजलास जी मेज़बानी कंदो। अरब मुल्कनि खे बि दावत ॾिनी वई आहे। नार जे मुल्कनि खे दावत। नवनि रस्तनि जी तफ़सील ट्रांज़िट इंतज़ामनि खां आगाहीअ लाइ आहे। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका पारां ॾखण वारो रस्तो खोलण लाइ ज़ोर भरण बावजूदि इहो रस्तो बंदि कयो वेंदो। ईरान जे कशम बेट ते वापारी जहाज ते हमिलो। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो, टे ॼणा ज़ख़्मी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त खिते जे सभिनी मुल्कनि खे गॾिजी अमुन अमान क़ाइम करणु घुर्जे। अमरीका में हिमत आहे त ईरानी फ़ौज खे मुंहुं ॾे असांखे दॿा ऐं धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे। अमरीका जारियत बंदि करे त आबनाए अरुंस खुली वेंदो। आबनाए अरुंस बाबति सूमर ते हुसैन जा सऊदी अरब ते हमला जारी। वधीक ॿ ॼणा ज़ख़्मी। मस्जिद इमारतुनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान पहुतो। सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में यमनी हुसैन जे मिज़ाइल हमले में ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सऊदी अरब जे सिविल डिफेंस जे तर्जुमान जो चवण आहे त शहरी हंधनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। लंडन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारां तकरीब मुनक़द। नवनि सूबनि जी मुखालफ़त। ज़िलनि खे इख़्तियार ॾियण जी घुर। तकरीब में मज़हर अब्बास, इफ्तिखार आलम, नसीर मेमण, जामी चांडियो, ख़ालिद खोखर, मोहम्मद ख़ान अबड़ो ऐं ॿिया शरीक। संदन चवण आहे त मुल्क में सूबनि खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ ॾिफेड़ पखिड़े रहिया आहिनि। सूबनि खे टोड़ण सां पाकिस्तान तरक़ी त न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद ख़तरे में पइजी वेंदो। सूबनि खे टोड़ण वारियूं ॻाल्हियूं करण बदिरां ज़िली सतह ते इख़्तियार ॾिना वञनि। धाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजलीअ जो ब्रेक डाउन। कराचीअ खे पाणी फरहमी मुतासिर। बिजली बंदि थियण सबबि मलीर, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत ॿियनि इलाइक़नि खे फरहमी बंदि। पाणीअ जी फरहमी बंदि थियण करे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणीअ जो बोहरान पैदा थी वियो। शहरी तकलीफ़ुनि जो शिकार। वाटर बोर्ड इंतिज़ामिया जो चवण आहे त के इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबबि सुबुह 6 वॻे बिजलीअ जो ब्रेक डाउन थियो। बिजली बंदि थियण सबबि धाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21

Bien. जमायत इस्लामीअ जा पेट्रोलियम लेवीअ ख़िलाफ़ 36 शहरनि में धरणा जारी। जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हिन मुल्क में हिकु अछराफ़िया ग्रुप आहे जेको माण्हुनि खे लुटे रहियो आहे। 20 सेप्टेम्बर ते सॼी इस्लामाबाद मां माण्हू ईंदा हुआ, पेट्रोलियम लेवीअ खे भताखोरी टैक्स करार ॾेई छॾियो आहे। धरणनि में माण्हुनि जो तइदादु हर गुज़रंदड़ ॾींहं सां वधी रहियो आहे। पेट्रोलियम जे क़ीमत सां को बि तालुक़ु न आहे।

0: हैदराबाद जाम छोरो ऐं सखर में सेंटर क़ाइम कया विया। एसटीएस जो उमेदवारनि सुञाणप कार्ड या आईडी ज़रिए एडमिट स्लिप डाउनलोड करे सघनि था। रजिस्ट्रेशन वक़्त चूंडियल इम्तिहानी शहर हतमी करार। टेस्ट सेंटर तब्दील न थींदो। एमडी केट उमेदवारनि खे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते एसएमएस मोकिलिया विया। कार्ड कढण जी हिदायत। इलाइक़े में मैट्रिक जे शागिर्द जे क़त्ल ख़िलाफ़ छहें ॾींहं बि थाणे अॻियां एहतजाज। घर अंदर ॾुहारनि जे फायरिंग में क़त्ल थियल रोशम जे वारसनि ऐं इलाइक़े वासनि एहतजाज कयो। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान, डीआईजी इरफान बलोच जूं ॻाल्हियूं नाकाम। मक़तूल रोशम जे तदफ़ीन हिन वक़्त ताईं खाने में पयल आहे। पीपी, जेयूआई, एनपीपी ऐं जमायत इस्लामी जे मक़ामी अॻवाणनि पारां बि मक़तूल शागिर्द जे वारसनि सां मुलाक़ातूं एहतजाज ख़तम करण जी अपील आहे। खेरपुर नाथन शाह में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ अवामी पुरियत तहरीक जे सॾ ते रैली। सिंधू दरिया ते धाड़े वसीरनि जी फुरलट। करप्शन ख़िलाफ़ 10 किलोमीटर प्यादल मार्च। औरतूं बि शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध जे विरांगे जी साज़िश थी रही आहे, जेका सिंध जा 7 करोड़ सिंधी कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदा। जलालपुर किनाल ठाहे सिंधू दरिया ते धाड़ो हयो पियो वञे। वसीलनि जी फुरलट क़बूल न कंदासीं। के माड़ीपुर मारिजी वियो गुलबाई वेझो। मुक़ाबले में मारिजी वियल जवाबदार जो लाश जना इस्पताल मुंतकिल। मारिजी वियल ॾोहारीअ जी 35 वरनि जे ज़ियाउर रहमान पुट अकबर हुसन तौर सुञाणप थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद भुटो मोड़ वटि मुक़ाबले में हिकु ॾोहारी ज़ख़्मी थी पियो। रेस्क्यू ज़रियनि जो चवणु आहे त ज़ख़्मी थियल जवाबदार जी 25 वरनि जे शायदि पुटरीसा तौर थी आहे। पिथोर जे सूबे ऐं मिठड़ाऊ केनाल ते मुबैना धाड़े ख़िलाफ़ सवें आबादगार रोडनि ते निकिरी आया। अॻवाणनि चयो त पिथोरो वाइट टेल सब डिवीज़न ते पवंदो। पर पूरी शाख आहे। पाइपलाइन सां केतिरा ई इलाइक़ा बंजर बणिजी वेंदा। माण्हुनि ताईं पीअण जो पाणी न पहुचंदो। मनसूबो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल। मरीजन जो पैथिक तरीके से कन आजमाए डिस्ट्रेस हो रहा है। क्लिनिक जी जुमो मौका ब्राणी सत्तू करियो।
4: हक सच हैदराबाद 91 नारा।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंग
1: टुकड़ों से जुड़ी
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीए FM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योमे दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरियात। पाक फौज को सलाम।
1: कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम राजी होते हैं। जो हो जाती है माराजी, तो बेटे राजी होते हैं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकिस्तान के दहशतगर्दी से गढ़ने की कोशिश नाकाम। मलेशिया के वजीर आजम सा एक इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल के मेजबान पहलगाम वाके के पाकिस्तान के गढ़ने अनवर इब्राहिम सिद्धू इनकार कयो। अनवर इब्राहिम असाजी एजेंसी कदें अड़ी रिपोर्ट न डनी है। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, अजीम तहजीब ए सकाफती उजाण है। ईरान अबना अरुम्स के खोलण लाए अमरीका के सत शर्त पेश कर छ्या। रूसी मीडिया के चवण है ईरान ट्रियाखड़ी कंदड़ मुल्क अमरीका के शर्त पेश कया। तहरान सूमर से मस्कत में इजलास की मेजबानी कद अरब मुल्क के भी दावत डनी वही है। नार के मुल्क के दावत नवन रस्त के तफसील ट्रांसिट इंतजाम का आगाही लाए है। ईरानी मीडिया मूजिब अमरीका पारा दखण वो रस्त खोलण लाए जोर भरण बावजूद यो रस्त बंद वो। ईरान के कशम बेट से व्यापारी जहाज से हमलो। हमले में एक जणो मार वो टे जणा जख्मी। ईरानी सदर मसूद पज़िशान है खिते के सभी मुल्क के गर्जी अमुन अमान कायम कर घुर्ज। अमरीका में हिम्मत है ईरानी फौज के मोड़े असा के दबा ए धमक से झुकाय न तो सके। अमरीका जायद बंद करे तो आबना अरुस खुली वो आबना अरुस बाबत सूमर से ओमान से मुआदे से सही थी वेंदी। हुसैन जा सऊदी अरब से हमला जारी वधिक बजना जख्मी। मस्जिद इमारत ने गाड़ियों के नुकसान पहुंतो। सऊदी अरब के शहर जाजान में यमनी हुसैन के मिजाइल हमले में बजना जख्मी थी पिया। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस के तर्जुमान जो चवण है शहरी हदन के निशानो बनाने आलमी कानून की भंकड़ी है। लंदन में साउथ एशियन फेस्टिवल पारा तकरीब मुनद कई वही। नवन सूबन की मुखालफत जिलन के इख्तियार डण की घुर। तकरीब में मजहर अब्बास इफ्तार आलम नसीर मेमण जामी चांडो खालिद खोखर मोहम्मद खान अबड़ो ए बिया शरीक। संदन चवण है मुल्क में सूबन के ट्रोण जो गाल डिफेड़ पखेड़ रहा है। सूबन के ट्रोण से पाकिस्तान तरक्की तो न कंदो पर उबतो मुल्क जो वजूद खतरे में पैजी वेंदो। सूबन के ट्रोण वाले गाल बदरां जिले की सतह से इख्तियार न वन। धाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो ब्रेकडाउन। कराची के पानी फराहमी मुतासिर। बिजली बंद थे सबब मलीर लांडी कोरंगी डिफेंस क्लिफ्टन समेत बन इलाक में फराहमी बंद। पानी की फराहमी बंद कर मुख्तलिफ इलाक में पानी जो बोहरान पैदा थी वो। शहरी तकलीफन जो शिकार वाटर बोर्ड इंतजाम चवण है के इलेक्ट्रिक सिस्टम ने केबल फॉल्ट सबब सुबह छह वगे बिजली जो ब्रेकडाउन थो। बिजली बंद थे सबब धाबे की पंपिंग स्टेशन जहा एक्वी मां दह पंप बंद थी वह। जमायत इस्लामी जा पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 36 शहर में धरना जारी। जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम है इन मुल्क में एक अचराफिया ग्रुप है जो मानन के लुटे रो है। 20 सितंबर से सजे इस्लामाबाद में मानू इंदा आवाम पेट्रोलियम लेवी के भत्ताखोरी टैक्स करार दई छे। धरणन में मानन जो तादाद हर गुजरंदड़ डी का वधी रो है। पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल की कीमत से को भी ताल्लुक न है। काजी अहमद शाह के आज़ार खिलाफ शहरन की रैली। कौम परस पार्टी सियासी समाजी तंजीम ने सिविल सोसायटी पारा रैली कढ़ी थाने आडो एहतजाज कयो। अगवाण काजी अहमद ने अमन अमान की सूरत हालन ताई खराब है। मंशाह जो सरेआम विक्रो जारी है। आईजी सिंध नोटिस वी मंशाह जो विक्रो बंद कराए। सिंध पुलिस में सिपाही की भर्ती लाए केस पास कंदड़ उम्मीदवार जो हैदराबाद में एहतजाज। उम्मीदवार जो चवण है सजी सिंध जहा 1400 उम्मीदवार बिन साल ऑफर आर्डर्स न मिलने खिलाफ सरापा एहतजाज बनल है। लागापल अख्तर हैदराबाद के 800 उम्मीदवार समेत बिन जिले के नौजवान के आर्डर जारी नायन कया हुआ। सूबाई घरू वजीर आईजी सिंध मामले जो नोटिस वी ऑफर आर्डर कर

0: छोरो मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद लाड़काणो ऐं सखर में सेंटर कायम कया विया आहिनि। एसटीएस जो चवणु आहे त उमेदवार सुञाणप कार्ड या आईडी ज़रिए एडमिट स्लिप डाउनलोड करे सघनि था। रजिस्ट्रेशन वक़्त चूंडियल इम्तिहानी शहर हतमी करार टेस्ट सेंटर तब्दील न थींदो। एमबीके टेस्ट उमेदवारनि खे रजिस्टर मोबाइल नंबरनि ते एसएमएस मोकिलिया विया आहिनि। एसपीएस पारां उमेदवारनि खे एडमिट स्लिप जो प्रिंट अॻुवाट कढण जी हिदायत। पाइपलाइन मनसूबो ऐं मिठड़ो किनाल ते ख़िलाफ़ सवे आबादगार रोडनि ते निकिरी आया। अॻवाणनि चयो त पिथोरो वाटर सप्लाई पाइपलाइन जे मनसूबे जो असर मिठड़ो किनाल जे टेल सब डिवीज़न ते पवंदो। इहा पाइप न पर पूरी शाख आहे। पाइपलाइन सां केतिरा ई इलाइक़ा बंजर बणजी वेंदा। माण्हुनि ताईं पीअण जो पाणी न पहुचंदो। मनसूबो फौरी तौर बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकिस्तान के दहशतगर्दी से गंढण की कोशिश नाकाम। मलेशिया के वजीर आजम सा एक इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल के मेजबान पहलगाम वाके के पाकिस्तान के गंढण की कोशिश कई तनवर इब्राहिम सीधो इनकार कयो। अनवर इब्राहिम चयो ता असा जे एजेंसी कदें अड़ी रिपोर्ट न दिनी। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, अजीम तहजीब ए सकाफती उणान है। वफाकी वजीर एहसान इकबाल जो जमात इस्लामी जे नायब अमीर लियाकत बलोच से राबतो। हुकूमत गालन जे टे दौर लाए वधीक एक दिन जी मोहलत घुरी वरती। जमात इस्लामी ए हुकूमत जे विच में पेट्रोलियम लेवी ते गालन जो टो दौर सूमर ते थियणो हो। जमात इस्लामी जे नायब अमीर लियाकत बलोच जो चवण है एहसान इकबाल वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पैगाम पहुंचायो। वजीर आजम चाहे तो पेट्रोलियम लेवी ते गालियों अंगारे ते थियन। पेट्रोलियम लेवी ते हुकूमत सा गालियों अंगारे ए आईपीपीस बाबत अरबादी थी। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ शागिर्दन जो एहतजाज 51 डी भी जारी। शागिर्द अगवान मुतालबन के मंझ ताला के खंभ हड़ताल शुरू कर छी। संदन चवण हो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की उबतड़ मनपसंद वाणन के नवाजे वो। सीसी 2024 के नतीजन से भी कई सख्त एतराज आन। नतीजा तकरारी होजन बावजूद बीहर सीसी समेत बेन इम्तिहान की तैयारी कई पी वे। मुतालबा तस्लीम करण ती एहतजाज भुख हड़ताल जारी रखासी। धाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो डिघो ब्रेकडाउन। कराची के पानी फरामे मुतासिर। बिजली बंद थे सबब मली डांडी कोरंगी डिफेंस क्लिफ्टन समेत बेन इलाक के फरामी बंद। पानी की फरामी बंद थे मुख्तलिफ इलाक में पानी जो बोहरान संगीन थी वो। शहरी तकलीफन जो शिकार। वाटर बोर्ड इंतजामिया चवण है इलेक्ट्रिक सिस्टम में केबल फॉल्ट सबब सुबह 6 बिजली जो ब्रेकडाउन थो। बिजली बंद थे सबब धाबे की पंपिंग स्टेशन जहा 21 मां 10 पंप बंद थी वया। लाड़काने के सर शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी में इंदर शागिर्दन विच में झेड़ो। झेड़े दौरान शागिर्दन एक बे के लतुन ए मुकुन जो निशानो बनायो। शागिर्दन पारा एक बे के कुर्सियों बिहु वो। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। साझा वंदन लाइब्रेरी इंतजामिया का माहौल खराब कंदड़ शागिर्दन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो कर छो। कोरवा में स्कूलन की बंदिश। अस्पताल में दवाओं की खोट ए लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो डारण लाए एसटीपी की रैली। मुजाहरीन बदीन जिले में दिल की अस्पताल ना है।

0: स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे साम्हूं, नया पुल हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

यहाँ बैठ कर लेट कर खड़े होकर चलते फिरते आप मुझे सुन रहे हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैसेज करें। मैसेज का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल होना है।

बिल्कुल प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में जहां आवाज वहां रिश्ता, दिल से दिल तक का एक रिश्ता जो आप लोगों के साथ जुड़ जाता है और जुड़ा रहता है। फिलहाल इस वक्त हम मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगी शाम 7 बजे तक। जनाब मैं टॉपिक भी लेकर आई हूँ, उस पर बात भी करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आज इससे क्या टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है शाम का टाइम है और ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम होता है, सब इसमें रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई लेट कर आराम से अपने घर में होते हैं क्योंकि ऑफिस से मुख्तलिफ जगह से अपने काम से ऑफिस से कारोबार से फ्री होकर बैठे होते हैं और ये थोड़ा ठंडा टाइम भी होता है। तो कोई पार्क में भी जाते हैं घूमने फिरने तफरी के लिए, आउटिंग के लिए फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं आपस में, या दोस्त जो हैं वो बाहर आते हैं आउटिंग के लिए चले जाते हैं।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
3: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन.
2: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
3: मिले
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी. हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़. उधंदा रहो.
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खिते की बनी है आवाज.
6: जीए FM नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज.

तो जी बिल्कुल, और बात टाइम है, अच्छा गुजरता है इस टाइम, लोग अपने घरों में आ जाते हैं और कुछ घरों में रौनक शौनक लग जाती है, शाम की चाय का समा बन जाता है। फिलहाल आप लोग बनिए कॉमल दबा पर पानी पी रही है, भाई मैं पानी बहुत पीती हूँ, मुझे प्यास बहुत लगती है, और आप लोग भी पानी पिया करें, पानी पीना ज्यादा अच्छा है सेहत के लिए, मेरी तरह जैसे मैं पीती हूँ ना वैसे आप लोग भी पिया करें बार बार। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे आवाज़ों के ऊपर, तो जी घरों में रौनक चौनक होती है, आवाजें होती हैं, सम टाइम ये होता है कि अगर आप सुबह सुबह भी रौनक होती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, माँ की आवाजें आती है, जब हम छोटे छोटे होते हैं, अपना भी मैं बताऊँ तो स्कूल नहीं जाना देर हो जाएगी, या कहीं जाना है मदरसे ट्यूशन नहीं जाना देर हो जाएगी, कहीं घूमने जाना भाई जल्दी करो, इतना टाइम तैयार होने में टाइम लगता है, तो ये आवाजें वक्त के साथ साथ धीमी पड़ जाती हैं। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं मेरे आपके, जिन जिनके उन सबको हेल्थ तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे आमीन, और जिनके हयात नहीं है दुनिया से जा चुके हैं तो उनके बच्चों को उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो जी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम हो चुका है 5:40। तो जी बिल्कुल, अच्छा जी एक और अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करती हूँ, और साथ साथ आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगी भाई, थोड़ी बहुत शेयरिंग कर दिया करें, शेयरिंग करने से कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जी, तो मेरे पास अच्छे अच्छे मैंने आज सॉन्ग निकाले हैं, क्योंकि हम सैड नहीं रहना चाहते ना, तो हम चाहते हैं हम साथ अच्छा भी सुने, ऑल इज गॉन। तो जी बिल्कुल, इस वक्त मैंने प्ले किया है जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज को पेश कर चुकी हूँ आप लोग की खिदमत में, वो आज हमारे बीच है, लेकिन उनके गाए हुए गाने गीत आज भी हमारे बीच में है, उनके मदाहों को पसंद है जिसे मुझे पसंद है, मैं भी शेयर आप लोगों के साथ उनको शामिल करती रहती हूँ, और ये सदाबहार सॉन्ग होते हैं इनके आंखों को आंखों ने। जी बिल्कुल, ये जबरदस्त ट्रैक है इनका, जी आंखें आंखों को सपना दिखाती हैं, तो बेहतर आप भी इंजॉय करें आवाज के लिए।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
3: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
2: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: सऊदी हिमायती फोर्सेज जे इस्तेमाल हेठ अमरीकी ठहियल बख्तरबंद टैंक ते बि कब्ज़ो कयो वियो आहे। अरब मीडिया मूजिब मेमन बेट ते कब्ज़े बाद हुसैन जो बाबुल मदद ते मुकमल कंट्रोल थी वियो। अंसारुल्लाह कब्ज़ो कयल इलाइक़े मां लखें डॉलर्स जो फौजी सामान जब्त करे वरितो आहे। ईरान आबनाह हुर्मुज़ के खोलण लाइ अमरीका के सत शर्त पेश करे छॾिया। रूसी मीडिया जो चवण आहे त ईरान ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि ज़रिए अमरीका के शर्त पेश कया। तहरान सूमर ते मस्कत में इजलास जी मेज़बानी कंदो। अरब मुल्कनि खे बि दावत ॾिनी वई। नार जे मुल्कनि खे दावत नवनि रस्तनि जी तफ़सील ट्रांज़िट इंतज़ामनि खां आगाहीअ लाइ आहे। ईरानी मीडिया मूजिब अमरीका पारां ॾखण वारो रस्तो खोलण लाइ ज़ोर भरण बावजूद इहो रस्तो बंदि कयो वेंदो। ईरान जे कशम बेट ते वापारी जहाज ते हमलो। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो, टे ज़ख़्मी। ईरानी सदर मसूद पशेकियान मूजिब खिते जे सभिनी मुल्कनि खे गॾिजी अमुन क़ाइम करणु घुर्जे। अमरीका में हिमत आहे त ईरानी फ़ौज खे मुंहुं ॾे। असांखे दबाउ ऐं धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे। अमरीका जारियत बंदि करे त आबनाह हुर्मुज़ खुली वेंदो। आबनाह हुर्मुज़ बाबति सूमर ते ओमान सां माहिदे ते सयूं थींदियूं।

पाकिस्तान के दहशतगर्दी से गंढण की कोशिश नाकाम। मलेशिया के वजीर आजम से एक इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल के मेजबान पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान से गंढण की कोशिश कई तो अनवर इब्राहिम सीधो इनकार कर। अनवर इब्राहिम असाज एजेंसिन कदें अड़ी रिपोर्ट न डनी। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, अजीम तहजीब ए सकाफती उणा है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: स्पेशल लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद। 5 सालनि जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरी, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। यादि रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111। 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज़, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बेऔलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग: छंछर खां ख़मीस, सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राबितो करियो 03-26-22-00-440। ख़ुशख़बरी: हॾनि जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुबतला, कंधरा ऐं पसगिरदाईअ में रहण वारनि शहरनि जे लाइ ख़ुशख़बरी, हिकु रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप, जंहिं में जिना हस्पताल कराचीअ जो मशहूरु मारूफ़ हॾनि जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदो। तारीख़: 19 सेप्टेम्बर, छंछर जे ॾींहुं सुबुह 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं। हॾनि जी बीमारियुनि में मुबतला मरीज़, हॾनि ऐं जोड़नि जे सूर, चेल ऐं कुनर जो सूर, हॾनि जी TB ऐं कैंसर, ॿारनि में हॾनि जा मसाला, शुगर जे मरीज़नि में ज़ख़्म जो न भरजण ऐं हॾनि में मुबतला मरीज़नि जो स्पेशल चेकअप कयो वेंदो, त देर छा जी हिन मुफ़्त मेडिकल कैंप मां फ़ाइदो हासिल करियो। एड्रेस: भागचंद शिफ़ा डी केयर क्लिनिक, मेन रोड, कंधरा। राबितो 03-7331-7326।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03-00-93-12-700।
2: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
3: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
2: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
3: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती
2: ओनली ऑन GFM।

प्रोग्राम आपका रिश्ता में। अब हमारे पास टाइम बस सिर्फ 8 मिनट रहते हैं, बाकी 8 मिनट बकाया है हमारे पास, क्योंकि टाइम हो चुका है 6:52 PM। और बस ये एंड की तरफ से सब बेजक आपका हमारा साथ था। इसी तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अब आप पूरा हफ्ता वेट कीजिएगा और ठीक शाम 5 से 7 बजे तक मेरे साथ आ जाइएगा हफ्ते और इतवार यानी सैटरडे एंड संडे वाले दिन। तो जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज का प्रोग्राम।

0: It's 7 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Ras, a product by
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: जीए एफएम नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
6: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
7: ब्रॉट टू यू बाय
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
9: रक्षा है चुंगती ते मावार 20 लीटर पेट्रोल ते 20 लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया लिफ्ट रो विंदो 800 सीसी ताईं नंढियूं गाॾियूं इस्तेमाल कंदड़नि खे माहवार 30 लीटर पेट्रोल ते 20 लीटर ते 100 रुपया रिलीफ मिलंदो वज़ीर आज़म चयो त तेल जी क़ीमतुनि में वाधि सबबि अवाम ते पवंदड़ भार जो हुकूमत खे अहसास आहे ऐं ॾुखे वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं

हुसैन जी सऊदी अरब के कमांड सेंटर से हमले की दावा सऊदी अरब के हथियारों वाले डिपू ए कमांड मर्कज के निशानो बनाया वो यमन के हूसी बागिन रेड सी के स्ट्रेट के बेट से भी कब्जे की दावा कई यमनी हुसैन जो चवण है सऊदी हिमायती फोर्सिस के इस्तेमाल हेठ अमरीकी ठहल बख्तर बंद टैंक से भी कब्जो कर वरतो है। अरब मीडिया मूजिब मेवन बेट के कब्जे बाद हुसैन जो बाबुल मदद से मुकम्मल कंट्रोल थी वो अंसारुल्लाह कब्जो कल इलाक़ में लखें डॉलर्स जो फौजी सामान जब्त कर वरतो है।

पाकिस्तान खे दहशतगर्दीअ सां ॻंढण जी कोशिश नाकाम। मलेशिया जे वज़ीर आज़म सां हिकु इंटरव्यू में भारतीय टीवी चैनल जे मेज़बान पहलगाम वाके खे पाकिस्तान सां ॻंढण जी कोशिश कई त अनवर इब्राहिम सिधो इनकार कयो। अनवर इब्राहिम चयो त असांजी एजेंसियुनि कॾहिं अहिड़ी रिपोर्ट न ॾिनी। पाकिस्तान अज़ीम मुल्क़ आहे।

अकपो जो हरनाई में कोयले के खान में गैस धमाके का पोए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। फाथल पंज मजदूर के बचाया वो। खान में गैस धमाके के नतीजे में चार पोरत फौत पंज जख्मी थी पाया हुआ। जख्मियों के इलाज लाए कोयटिया मुंतकिल वो। हरनाई के रहवासन बर वक्त इमदादी कार्रवाई करण से पाक फौज की साराह कंदे तो पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन से फाथल मजदूर की जिंदगी बची वयू। वफाकी वजीर अहसन इकबाल जो जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से राबतो। हुकूमत गाल टे दौर लाधिक एक डी की मोहलत घुरी वरती। जमात इस्लामी ए हुकूमत विच में पेट्रोलियम लेवी से गाल टो दौर सूमर से थियण हो। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच जो चवण है अहसन इकबाल वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम चाहे तो पेट्रोलियम लेवी से गाल अंगारे से थियन। पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत से गाल अंगारे ए आईपीपीज बाबत अरबाते थन्द। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ शागिर्दन जो एहतजाज 51 डी भी जारी। शागिर्द अगवाणन मुतालबन की मान्यता लाए भुख हड़ताल शुरू कर छी। संदन चवण हो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के उबतड़ मनपसंद मानून के नवाजो वो। सीसी 2024 के नतीजन से भी खिन सख्त एतराज। तकरारी होजन बावजूद बीहर इम्तिहान वरता पा वनन।

पिंगरे वेझो पानी के वाले तेड़ो गोठ जो चंगो मुड़स कतल गोठ यूसुफ जोड़े जो में कासिम जोड़े जो के मुबैना तो लठी वही कतल कर वो पुलिस लाश तहवील में वेठी जांच शुरू कर छी धुरन में छिकतान बरकरार। लाड़काने के शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी में ईंदड़ शागिर्दन विच में जेड़ो जेड़े दौरान शागिर्दन एक बे के लतुन मुफ्कन जो निशानो बनाया शागिर्दन पारा एक बे के कुर्सियों भी हयी हुई वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। कोरबा में स्कूलन की बंदिश अस्पताल में दवाओं की खोट ए लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो डारण जो मुतालबो रैली मुजाहिरन तो बदीन जिले में दिल की अस्पताल ना है सरकारी अस्पताल में दवाओं भी नथी मिलन जिले में हजारे बाड़ा स्कूलन का बाहर आन स्कूलन में सहूलतों की खोट है पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात सबब नौजवान नस्ल तबाह थी रो है स्कूल में सहूलतों अस्पताल में दवाओं दे मंशियात जो विक्रो बंद करा वे। कंबर शादादकोट जिले में वधंदड़ बदमनी ए मंशियात के विक्रे खिलाफ एसटीपी की कुबो सईद खान का रैली M8 मोटरवे का रैली कड़ी बेनजीर चौक से धरण हो वो अगवान तो जिलो बदमनी के बाह में सड़ी रो है मंशियात जो विक्रो ए जुआ जहा अदा आम आन पुलिस बदमनी ए मंशियात के विक्रे से जब्तो आने में नाकाम है अमनमान बहाल कराए वे। पीर जो गोठ में जीडीए पारा वधंदड़ बदमनी खिलाफ एहतजाजी रैली शहर की बेशरकत अगवान चौथ पीर जो गोठ शहर में धाड़ा फुरू ए चोरियों रोज जो मामूल बनल शहरी गैर महफूज बनल शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाए परेशानी खत्म कई वे। तलार में नशे वाली गोरियों खाने सबब फौत थे नौजवान के वारसन जो लाश रखी धरणो गोठ फोटो वासन फौती हकीम माछी जो लाश रखी एहतजाज कर नारेबाजी वारसन तो शहर में मंशियात ए नशे वाली गोरियों के विक्रे सबब नौजवान तबाह थी रहा है मंशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई कर मंशियात कंबर ए दादू में टेस्ट पास कंदड़ उस्ताद उम्मीदवार जो ऑफर आर्डर न मिलने खिलाफ एहतजाज पीएसटी ए जेईएसटी उम्मीदवार प्रेस क्लब आरो एहतजाज कर उम्मीदवार इम्तिहान में 40 का मार्कू खयू आन 5 साल थी व्या अजा तई वेटिंग ते रखे वो इन वक्त तई ऑफर आर्डर ना दिना वाया ऑफर आर्डर जारी कर बेचैनी खत्म की वे।

ऐं ठरी मीरवा में वधंदड़ बदमनी ऐं मंशिया जे विकरे ख़िलाफ़ अमुन कमेटीअ जी रैली मुज़ाहिरनि पारां मीरवा कैनाल खां प्रेस क्लब ते रैली कढी वई। एहतजाज कंदड़नि पारां अमन अमान बहाल करे मंशिया जे विकरे ते ख़ात्मे जो मुतालबो।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

के आ गए, कहने का मकसद ये। देन एजाज गॉट 100 एट पर्थ, नेक्स्ट मैच में भी एजाज अहमद स्कोर्ड फैंटेस्टिक 116 अगेंस्ट मैग्रा, शेन वॉन एंड गिलेस्पी। अच्छा एक बात और, चाहे एजाज थे, इंजमाम, आमिर सोहेल, ये तमाम बहुत अच्छा पुल और हुक करते थे, और उसके बाद ये तमाम लोग जो थे सईद अनवर वगैरह, दे न्यू देयर क्रिकेट। अब हमारे यहां तो पुल और हुक, कोई शॉर्ट पिच कोई अच्छा बॉलर आ जाए उसको कर नहीं पाते बहुत। आई मीन साउथ शकील ने हालांकि कुछ अच्छे पुल किए सीरीज में, मगर इस मैच में मैंने उनको भी देखा, ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट पिच स्टफ। तो भैया बहुत, आई डोंट नो के इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या बनने वाला है और क्या होगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो। अब जान के क्या किया जाएगा, पीपल विल गेट एंग्री के ये बात कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी तनकीद करना, मगर बात यह है कि तनकीद की ही जानी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि तनकीद बनती है, और अब क्या किया जाए, आई ओनली कैन वंडर अबाउट दैट। और बाकी ये कि देखते हैं क्या सूरत हाल बनती, जरूर जो है वो हम आपसे ये बातें भी करेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त पहले ब्रेक पे जाने से पहले अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुकाबला खेला जा रहा है T20 का, उस पर जरा बात कर लेते हैं, और उसका मैं आपको बता देता हूँ उस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है। अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, न्यू दिल्ली में ये मुकाबला खेला जा रहा है, और इंडिया ने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला किया है एट न्यू दिल्ली। अफगानिस्तान का स्कोर है इस वक्त दूसरे ओवर के खेल में, जो लास्ट न्यूज मेरे पास आ रही है, दे आर इन फोर ओवर दे आर 38 for 2, यानी दे आर बैटिंग वेल। सदीकुल्ला अतल इज ऑन 13 of 12 बॉल, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है, और अभी अभी एक बंदा आउट भी हुआ है, हु गॉट आउट वो आपको बता देते हैं, आपको भी पूरा स्कोर कार्ड इसका शेयर कर लेता हूं। स्पर्ल रन रेट तो अच्छा अफगानिस्तान ने, एटलीस्ट ये तो है कि वो दलेरी से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि हमें नजर नहीं आती। चार ओवरों में 38 रन, लुक्स अ गुड स्कोर। इब्राहिम जाद रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए बगैर कोई रन बनाए, इब्राहिम जादराम ने 11 रन बनाए 10 गेंदों पे, 2 चौके लगाए, वो भी वो रन आउट हो गए, और गुरबाज तो कोई रन बना नहीं सके थे। अतुल ने 13 रन बना रखे 12 गेंदों, और दे हैव बीन 14 एक्स्ट्राज, सो इंडियन बॉलर्स आर कंसीडिंग एक्स्ट्राज विद ग्रेट जेनरोसिटी, दैट्स द अनदर थिंग। तो एक्स्ट्राज काफी दे रहे हैं, बट लेकिन उम्मीद है कि अफगानिस्तान विल गिव इंडिया गुड गुड गुड गुड बैटल और गुड फाइट इन दिस T20 मैच जो कि न्यू दिल्ली में खेला जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप आप सुन रहे हैं GAFM रेडियो नेटवर्क पे, और मेरे यानी राणा चौहान के साथ होते हैं आप हर संडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि वसीम अकरम ने क्या कहा है रजाउल्लाह के हवाले से, टीम के हवाले से, वो कोचिंग में क्यों नहीं आते, और बहुत सारी चीजों के हवाले से उनकी बातचीत सुनाई मैं आपसे उनके हवाले। इमरान खान को ले क्रिकेटर्स के मामला अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो भी आप सुनाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा वुमेन की जो एशिया कप खेली जा रही है उसका पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गई है, और सेमीफाइनल हार

0: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
2: जो भला साथ का तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
1: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वनन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना आया।
2: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
1: एक इहो की है?
2: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो, आई न ताकत मिलंदी।
1: तो तुम मां छा कया?
2: सोलो हला है, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट पूक जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
1: वाह यार वाह जी।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

कवर कर देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप पूरा दिन 140-145 पे बॉलिंग करें, आपके अंदर स्टेमिना और टेम्परामेंट हो एक पेस बॉलर वाला, जो कि उन्होंने कहा कि उनमें भी नजर नहीं आता। तो ये वाली सूरत हाल है, तो देखते हैं बहरहाल क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बहरहाल मैं समझता हूं कि बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक बहुत मुश्किल मरहलों से, बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है, जिनका कभी कभी तो जिक्र करते हुए भी जो है वो अब दुख होता है। मतलब कि यार कोई अच्छी खबर नहीं आती, कोई लौटकर ऐसा न्यूज नहीं आती जिससे कि बंदा सेलिब्रेट करे और बताए। एंड अफगानिस्तान जस्ट लॉस्ट फिफ्थ विकेट, उनकी बैटिंग का प्रोसेशन या जिसे हम उर्दू में जुलूस कहते हैं वो निकल गया, देयर लूसिंग विकेट लाइक 9 पिन्स। गुरबाज गॉट आउट फॉर नन, कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड बुमराह। इब्राहिम जादरान रन आउट हुए 11 रन बनाकर, सदीकुल्ला अदल ने 13 रन बनाए 13 गेंदों पे, गुलबदीन नाइब ने 2 रन बनाए 6 गेंदों पे, दरवेश रसूली ने 2 रन बनाए 6 गेंदों पे, अजमतुल्ला उमरजई 1 रन पे नॉट आउट हैं, 14 एक्स्ट्राज हैं और 43 रन पे उनकी 5 विकेटें गिरी हैं। 1 for 5, 238 यहां तक सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी, 3 for 39, 4 for 41 एंड 5 for 43। बुमराह 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, अर्शदीप 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 2 ओवर 8 रन 1 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट, ये सूरत हाल है। आने वाले खिलाड़ियों में जो है इनके पास कोई बहुत लंबी जोड़ी बैटिंग बची नहीं है। इंडिया की प्लेइंग 11 संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशान, सुरेश अय्यर टीम के कैप्टन है, तिलक वर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, शिवाम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। लेट्स हेड बैक टू दी श्रीलंका वर्सेस इंडिया वुमेन, उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। और इंडियन वुमेन आर 23 for 9, शेफाली वर्मा नॉट आउट है 12 रन पे 9 गेंदों में, जिसमें 2 चौके लगाए उन्होंने। उसके साथ साथ जो स्मृति मंधाना है उन्होंने 11 रन बनाए 5 गेंदों में और 2 चौके लगाए हैं। तो पहला ओवर जरूर उन्होंने ऐसे ही खेला, लेकिन उसके बाद अगली 8 गेंदों में 18 रन इंडियन बैटर्स ने बनाए हैं एंड दे आर रेडी गोइंग आफ्टर बोलिंग एंड सम अटैकिंग क्रिकेट एंड अटैकिंग स्ट्रोक्स, ये सूरत हाल है। तो बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप आप सुनते हैं मेरे यानी राणा अशफाक के साथ हर एतवार की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और अभी भी आजकल 8 बजे के करीब जो है वो ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि काफी गहरी रात हो गई है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। तो बहरहाल आप जहां कहीं भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, बावजूद इसके कि हमारी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, बावजूद इसके कि हमारी हॉकी स्ट्रगल कर रही है, बीइंग अ नेशन भी यकीनन कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं है, बट स्टिल वन कैन होप कि आप जो हैं जिंदा दिली का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है, हार को कबूल करेंगे, पॉजिटिव टेकआउट करेंगे। कुछ पॉजिटिव रहे वो ये कि एक तो उन्होंने जो 80-81 रन की इनिंग्स खेली है 9वें-10वें नंबर पे आकर, रजाउल्ला ने वो बहुत अच्छी थी, साउथ शकील ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली, पर्टिकुलरली जो 97 रन उन्होंने किए दैट वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। इस मैच में भी उन्होंने 43 और साथ साथ सेकंड इनिंग्स में भी कुछ रन किए, सो ही इज गेटिंग बेटर, होपफुली कि वो एक अच्छे जेन्युइन मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैटर की सूरत में उभरकर सामने। कोई खास मोहम्मद अब्बास ने बैटिंग भी अच्छी की, 40+ रन भी किए, और सेकंड इनिंग्स में जब इंग्लैंड चेज करने आए तो 2 खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास ने आउट कर लिए थे पहले ही ओवर में। बट ये एक वो बात है कि वो एक जो टेम्पो जिससे हम कहते हैं एक जो रिथम होता है वो बरकरार नहीं रख पाती पाकिस्तान की टीम, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। वन एक स्टेज पे बाबर आजम एंड साउथ शकील वॉज डूइंग ए ग्रेट जॉब, लेकिन फिर एकदम विकेटें गिरी, एक एक करके बाद एक बाद एक 8 विकेट गिर गई, 9वीं विकेट पे जाकर कोई पार्टनरशिप लगी 127 रन की। तो कहीं ना कहीं आकर ये जो आ जाता है, मतलब कि ब्लॉक आ जाता है, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये एक इस चीज से बचना होगा, इस चीज से इज्तनाब करना होगा। बाकी यकीनन फिर भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट को तलाश

0: करना चाहिए, बेहतर से बेहतर फैसले लेने चाहिए। क्या बेहतर फैसले किए जा सकते हैं, क्या चेंजिंग की जा सकती है, क्या नहीं, इस पे मजीद जो है वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में हम बढ़ गए हैं एक और कमर्शियल ब्रेक लिया है। आइए कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जब लौटेंगे तो मजीद बातचीत करेंगे स्पोर्ट्स राउंडअप में। लेट्स टेक ए ब्रेक।
1: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

चंद्रा उडप्पी अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में नए मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते गौर। एम क्यू एम जमायत इस्लामी ऐं पीटीआई जी मुखालफ़त। लोड शेडिंग छो? सिंधी असेंबली पारां हेस्को, सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक चीफ 23 सेप्टेम्बर ते तलब। मकानी चूंडू वक़्त ते थींदियूं। मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बि थी सघंदा। बिल पेश, कमेटी बि क़ाइम। जखराणी भाइरनि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया। पीपल्स पार्टी MNA एजाज़ जखराणी जे नंढे भाउ भाइरनि ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। गम्स में औरत स्टाफ हिरासमेंट जो शिकार, केस दाख़िल, जवाबदार गिरफ़्तार। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोट सां बरसाति जी अॻकथी। स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा मुंदुनि जी तब्दीली ऐं उन जा सबब। सूबाई घरु वज़ीर ज़ियालत सलंजार जे सदारत हेठि सिंध असेंबली जे 12 रुकनी ख़ासि कमेटी जो पहिरियों इजलास थियो, जंहिं में मकानी निज़ाम बाबति तरमीमी बिल ते गौर कयो वियो। इजलास दौरान MQM जमायत इस्लामी ऐं तहरीक इंसाफ़ तरमीमी बिल खे रद्द करे छॾियो। उन मौके ते ज़ियालत सलंजार चयो त MQM जो बिल अञा नाहे आयो, असेंबली जी इजाज़त सां ई उन ते गौर कयो वेंदो। हुन चयो त चूंड शेड्यूल जारी थींदे ई इंतज़ाम चूंडियल नुमाइंदनि हवाले कया वेंदा, जॾहिं त एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ानो जा मामला हलाए सघे थो। सिंध असेंबली जे स्पीकर अवेस कादर शाह हेस्को, सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक जे CEOs खे 23 सेप्टेम्बर ते हर सूरत में पार्लियामानी कमेटी आॾो पेश थियण जो पाबंद कंदे घरू वज़ीर खे हिदायत कई आहे त जेकॾहिं 3 CEOs पेश नथा थियनि त घरू खातो संदन मौजूदगी यकीनी बणाए। इजलास में PTI जे MPA सजाद सूमरो ध्यानु छिकाए नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त लोडशेडिंग सबब लियारीअ जी आवाम अज़ाब में आहे, पहिरियां हक़ ॾियनि ऐं पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कनि। जंहिं ते स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त बिजली जो मसलो रुगो कराचीअ जो नाहे, सिंध जे माण्हुनि जे उन अहम मसले ते हेस्को, सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक ध्यानु नथा ॾियनि। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण उन मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सुभाणे लोडशेडिंग ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज कंदो त असां अवाम सां बीहंदासीं। उन मौक़े ते सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त बिजली संगीन मसलो आहे, पावर वारी वज़ारत जी नाअहली ऐं मिसमेनेजमेंट करे अवाम, वापारी ऐं सनतकार भोगनि था। के इलेक्ट्रिक खानगाइण बावजूद लोड शेडिंग आहे। के इलेक्ट्रिक, हेस्को ऐं सेपको अवाम खे सर्विस ॾियण में नाकाम विया आहिनि। हेठी सतह ते को मेकेनिज़म नाहे। जकमाबाद में पारो 50 सेंटीग्रेड हूंदे माण्हुनि खे गर्मीअ में मारियो पियो वञे। अवाम जी ज़िंदगी अज़ाब में आहे। रुगो बिजली न पर गैस ऐं पीअण जे पाणीअ में बि सिंध सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे। उन खां अॻु सिंध असेंबली रेंजर्स जे सिंध जी मुक़ररी में 19 जुलाई 2027 ताईं 1 साल ताईं वाध फातमदीद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो रिसर्च बोर्ड जे क़याम ऐं इकरा यूनिवर्सिटी जे एक्मी तरमीमी मंज़ूरी करे वरितियूं। इजलास में पाकिस्तान जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे भेटा पेश करण जो ठहराउ बि यकराए सां मंज़ूर कयो वियो। सिंधु हुकूमत मकानी इदारनि जो मुदो ख़तम थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे मकानी चूंडू कराइण जूं दरख़्वास्त ॾींदी। नए मकानी चूंडनि ताईं मौजूदा मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर उहिदनि ते बरक़रार रहंदा। सिंध जे लोकल गवर्नमेंट कानून में तरमीम लाइ बिल पेश, ख़ासि कमेटी बि क़ाइम। काल्ह सिंध असेंबलीअ में लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में तरमीम वारे बिल पेश कयो वियो, जंहिंखे लोकल बॉडीज़ तरमीमी बिल 2026 जो नालो ॾिनो वियो। मसूदे मूजिबि नए कानून तहत मेयर ऐं चेयरमैन पंहिंजो मुदो मुकमल थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखे सघंदा। तरमीमी बिल में तजवीज़ ॾिनी वई त मकानी इदारनि जूं चूंडू कराइण लाइ मुदो ख़तम थियण खां 120 ॾींहं अॻु इलेक्शन कमीशन खे लेटर लिखियो वेंदो। बिल मूजिब डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन हाणे मुशरफ़ दौर जे ज़िले हुकूमतुनि जीअं लाॻापियल काउंसिल जा कन्वेनर हूंदा। उहे काउंसिल जे इजलास जी सदारत पिण कंदा। तरमीमी बिल तहत चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ 2/3 जी अक्सर सां मंज़ूर थी सघंदी। तरमीमी बिल में कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन जे चीफ एग्जीक्यूटिव खे मेट्रोपोलिटन कमिश्नर तौर मुक़रर करण जी तजवीज़ पिण शामिल आहे। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2026 तहत SHOs, UC चेयरमैन ऐं SSPs मेयर या ज़िले चेयरमैन सां अवामी तहफ़ुज़ ऐं अमन अमान बाबति राब्तो रखंदा ऐं सलाह मशवरा कंदा। बाक़ी बलदियाती नुमाइंदनि खे पुलिस जे इंतज़ामी तहक़ीक़ाती मामलनि में मुदाख़लत करण जो अख़्तियार न हूंदो। यूनियन कमेटियुनि ऐं
यूनियन काउंसिलन जे चेयरमैन के सफाई की सूरतहाल ए गैर कानूनी अदावतों की सीधी रीत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डां निशानदही करण वारा इख्तियार पिण डिना विया आहिनि। तरमीमी बिल में बल्दियाती इदारनि खे मकामी नुमाइंदनि खे मौसमियाती तब्दीलियुनि ऐं बहितर ख़िदमतुनि बाबति तरबियत ॾियण लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत तरबियती इदारा क़ाइम करण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। तरमीमी बिल वारे मसौदे जे जाइज़ो वठण जे लाइ हिकु पार्लियामानी कमेटी पिण जोड़ी वई, जंहिं में हुकूमत पारां सूबाई वज़ीर ज़ियाल सलंजार, सईद गनी, जाम खान शोरो, नासिर शाह, ख़ास मुआविन सलीम बलोच, समीता अफज़ाल ऐं कासिम सिराज सूमरो ऐं अपोज़िशन मां मोहम्मद तहा, इफ्तिखार आलम, मोहम्मद फारूक ऐं शब्बीर अहमद मेंबर हूंदा। जखराणी ॿाहिरि में इख़्तिलाफ़ घटि न थी सघिया। पीपल्स पार्टी एमएनए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाउ ज़िले काउंसिल जे मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। अॻूणे एमएनए मरहूम मीर बाबल जखराणीअ जे पुटनि पीपी एमएनए एजाज़ जखराणी, संदन भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी विच में हलंदड़ इख़्तिलाफ़ ख़तम न थी सघिया आहिनि। पीपल्स पार्टी एमएनए एजाज़ जखराणी जे नंढे भाइरनि ख़ालिद जखराणी, आज़ाद जखराणी पंहिंजे ज़िले काउंसिल जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। यूसी दादपुर जागीर जे ज़िले काउंसिल मेंबर ख़ालिद जखराणी ऐं यूसी अलीपुर जे ज़िले काउंसिल जे मेंबर मीर आज़ाद जखराणी पंहिंजनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, जॾहिं त मीर ख़ालिद जखराणी ॿिन्ही भाइरनि जी ॾिनल इस्तीफ़ा ॾियण जी तस्दीक कई आहे। होॾां ज़िले काउंसिल जे मेंबर तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ एजाज़ जखराणी पंहिंजे ड्राहे पटकियल बंगले ॿाहिरां पहुची मेड़ खे ख़िताब कंदे चयो त आऊं पंहिंजो बंगलो ड्राहिण खां बचाए न सघियो आहियां, त अव्हां खे कीअं तरक़ियाती फंड ॾेई सघंदुसि। हुन राब्तो करण ते ॿुधायो त मुंहिंजी यूसीए में ईंदड़ बजेट करप्शन जे वर चढ़ी वई आहे, ऐं कुझु नथो करे सघां। करप्शन कंदड़ चेयरमैन ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ऐं नेब खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि त मुंहिंजी यूसी अलीपुर में थींदड़ रिकॉर्ड करप्शन जे मामले जो जांच करे ज़िमेवार ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में आंदी वञे। ॿिए पासे ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त जेकमाबाद जी मालपीड़ी अॻूणे एमएनए मरहूम मीर बाबल जखराणी जे हवाले थियल हुई, जेका मालपीड़ी उन जा नंढा पुट ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी संभालींदा हुआ, पर एमएनए मीर एजाज़ जखराणी जा पुट ज़ैद हुसैन जखराणी जे फौत थियण खां पोइ हलंदड़ इख़्तिलाफ़ खां पोइ मालपीड़ी जो ठीको नंढनि भाइरनि ख़ालिद जखराणी ऐं आज़ाद जखराणी खां खसियो वियो। यादि रहे त पीपल्स पार्टी एमएनए एजाज़ हुसैन जखराणी जे पुट ज़ैद जखराणी जे लाॾाणे खां पोइ भाइरनि में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ। एजाज़ जखराणी पंहिंजे नंढे भाउ मीर आज़ाद जखराणी खां सोशल मीडिया ज़रिए लातालुकीअ जो इज़हार कयो हो, जंहिंखां पोइ जखराणी बिरादरीअ जे मौज़ूद मामलात खे तय करण जी कोशिश कई वई, पर उन बावजूद मामला ठहण बदिरां वेतर ख़राब थी विया। गम्बट गम्स अस्पताल में औरत स्टाफ के गम्स मुलाजम पारा हिरासा करण जो इंकशाफ। गिम्स जे असिस्टेंट लीगल एडवाइजर गुलाम अब्बास रतड़ जे फरियाद ते गम्बट थाने ते एक सुञातल एहतशाम लगारी समेत 15 अण सुञातल जवाबदारनि खिलाफ़ केस दाखिल कयो वियो आहे। गिम्स अस्पताल जे असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र गुलाम अब्बास रतड़ केस में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त मुख्य कैंसर शोबे जी हेड डॉक्टर सतीन शाह पाण वटि घुराए ॿुधायो त गिम्स मुलाज़िम एहतशाम लगारी औरत स्टाफ खे हिरासमेंट करण जूं शिकायतूं कयूं ऐं गिम्स मां दवाऊं चोरी करण जी पिण शिकायतूं मिलियूं आहिनि, जंहिं बाद मां एहतशाम खे रिलीव कयो आहे। जंहिं बाद एहतशाम लिगारी मुख़्तलिफ़ नंबरनि तां मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो कूड़ो हेठि ॼाणाए कालूं कंदो हो त नेकाली नल जवाबदार खे नौकरीअ में बहाल कयो ऐं जाली आई डी ज़रिए 20 लख जी घुर कई। वाजू पिण 10 माण्हुनि जी गैंग खां प्रेशराइज कराईंदो रहंदो हुयो ऐं ब्लैकमेल कंदो रहंदो हुयो। अहिड़ी फरियाद दाख़िल करे मामले जी जांच कई वञे। गम्स जे लीगल एडवाइज़र जी फरियाद ते दाख़िल केस में मुलविज़ जवाबदार एहतशाम लिगारी खे गम्बट पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मौसमियात खाते सिंध जे राजधानी कराची मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोड़ तेज़ हवाउनि ऐं वक़फ़े सां बरसात जी अॻकथी कई आहे। मौसमियात खाते मूजिबि उत्तर ओलह नार बंगाल ऐं इंडोनेशिया जे सामूंडी इलाइक़नि में घटि दॿाउ वारी हवा जो सिस्टम मौजूदु आहे, जेको हिन वक़्ति छत्तीसगढ़ ऐं उन सां लाॻापियल इलाइक़नि मथां मौजूदु आहे ऐं उन निज़ाम जी ओलह तरफ़ वधण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवण आहे त सुभाणे शाम खां 16 सेप्टेम्बर ताईं थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन, ठट्टो, सिजावल ऐं टंडोमहमद खान में वक़फ़े सां तेज़ हवाऊं, आंधारी ऐं बरसात जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवण आहे त 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं सांगड़, खैरपुर, हैदराबाद, टंडोलयार, मटियारी, शहीद वरिंदराबाद ऐं जामशोरो में बि आंधारीअ सां गॾु मींहुं वसी सघे थो। मौसमियात खाते कराचीअ लाइ बि बरसात जी अॻकथी कंदे चयो आहे त शहर में 14 खां 16 सेप्टेम्बर ताईं गजगोड़ सां गॾु हल्की बरसात जो इम्कान आहे।
जॾहिं त अॼु ऐं सुभाणे मौसम गरम ऐं घिमियल रहण जो इम्कान पिणो आहे। मौसमियात खाते मूजिब उन दौरान कराची में वधि खां वधि गर्मी पद 36 खां 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे।

साल दौरान मौसम में ईंदड़ तब्दीलियूं फितरत जो एक अहम हिस्सो आइन। बहार जी खुशगवार हवाउन खां वठी उन्हारे जी सख्त गर्मी, सरव जी पन छण आई सियारे जी थद ताई हर मुंद पांजी अलग सुजाणप खूबसूरती आई असर रखे थी। मुद्दन जी तब्दीली जो बुनियादी सबब धरती जो सिज जी चौधारी गर्दिश करण आई पांजे महवर ते लगभग 23.5 दर्जा झुकियल हुजण आहे। धरती जे उन झुकाव सबब साल जे मुख्तलिफ़ वक्तन में सिज जी रोशनी मुख्तलिफ़ इलाइकन ते मुख्तलिफ़ अंदाज सां पवे थी, जंहिंजे नतीजे में गर्मी पद आई मौसम में तब्दीली अचे थी। बहार बहार के फितरत जी सजावट आई गुलन जी मुंद चयो वञे थो। आम तौर ते फरवरी जे विच धारे बहार जी आमद महसूस थियण शुरू थिए थी आई अप्रैल ताईं मौसम खुशगवार रहे थी। हिन मुद में सियारे जी थद घटण लॻे थी, हवा में नरमी अचे थी आई वणनि ते नवां सावा पन फुटण सां गॾु मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल टिण शुरू थियनि था। बागन पोखुनि ऐं कुदरती नज़ारनि में नओं साह पैदा थिए थो। उन्हारो उन्हारो साल जे गर्मी तरीन मुंदुनि मां हिकु आहे, जेको आम तौर ते मई खां सेप्टेम्बर ताईं जारी रहे थो। जून ऐं जुलाई में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ऐं मुल्क जे केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मी पंहिंजे उरूज ते पहुची वञे थी। हिन मुंद में ॾींहं ढिघा ऐं रातियूं निस्बतन नंढियूं थियनि थियूं। गर्मी वधण सबबि पाणीअ जी ज़रूरत बि वधी वञे थी। उन्हारे जे पोएं हिसे में ख़ासि तौर जुलाई खां सेप्टेम्बर ताईं चौमासी जूं बरसातूं केतिरनि ई इलाइक़नि में गर्मीअ जो ज़ोर टोड़ियुनि थियूं ऐं खु़श्क ज़मीन खे नओं जीवन बख़्शीनि थियूं। सरव उन्हारे खां पोइ सरव जी मुंद अचे थी, जेका आम तौर ते अक्टूबर ऐं नवंबर में महसूस कई वञे थी। हिन मुंद में गर्मी पद आहिस्ते आहिस्ते घटिजण शुरू थिए थो ऐं हवा में खनकी पैदा थियण लॻे थी। केतिरनि ई वणनि जा पन पीला ऐं सुकल थियनि था, पोइ छहण शुरू थियनि था। उन करे सरव खे पन छण जी मुंद पिण चयो वेंदो आहे। हिन मुंद सियारे जी आमद जो पैगाम खणी अचण वारी मुंद जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। सियारो डिसंबर खां फेबरवरी जे विच ताईं सियारे जी मुंद हूंदी आहे। हीउ साल जो थधो दौर आहे, जंहिं में ॾींहं नंढा ऐं रातियूं डिघियूं थींदियूं आहिनि। सिंध जे उतरियनि ज़िलनि ख़ासि तौर ते जेकमाबाद कंबर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में सियारे दौरान थधि जो ज़ोर वधीक महसूस थींदो आहे, जॾहिं सामूंडी इलाइक़नि जहिड़ो कराची में मौसम निस्बतन मुतादल रहंदी आहे। सियारे में माण्हू गरम कपड़ा इस्तेमाल कंदा आहिनि, जॾहिं त केतिरनि ई इलाइक़नि में सुबुह जो कोहीड़ो पिणु ॾिसण में ईंदो आहे। मुंदुनि जे तब्दीलीअ जो साइंसी राज़ सवाल उहो आहे त आख़िर मौसम छो तब्दील थियनि था। साइंसी तौर ते

उन जो बुनियादी सबब धरतीअ जो पंहिंजे महवर ते लॻभॻि 23.5 दर्जा झुकियल हुजण ऐं सिज जे चौधारी गर्दिश करणु आहे। जॾहिं त धरतीअ जो को हिसो सिज ॾांहुं वधीक झुकियल हूंदो आहे त उते सिज जूं किरणूं वधीक सिधियूं पवनि थियूं ऐं गर्मी वधी थी, जंहिं सां उन्हारे जी मुंद पैदा थिए थी। उन जे उबतड़ जॾहिं सिज जूं किरणियूं कंहिं इलाइक़े ते ॾेढियूं पवनि थियूं त गर्मी घटि पहुचे थी ऐं सियारे जी मुंद अचे थी। बहार, उन्हारो, सरव ऐं सियारो सिर्फ़ मौसम जा नाला न पर फितरत जी हिकु मुसलसल तब्दीलीअ जो ख़ूबसूरत सिलसिलो आहिनि। हर मुंद इंसान, जानवरनि, पखियुनि ऐं वणनि, फसलनि ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ ते पंहिंजो असरु छॾे थी। मुंदुनि जी उहा तब्दीली असांखे उहो बि ॿुधाए थी त धरती हिकु ज़िंदा ऐं मुतहरिक निज़ाम जो हिसो आहे, जिते सिज, धरती ऐं कुदरत जा मुख़्तलिफ़ अमल गॾिजी ज़िंदगीअ जे रंगनि खे जनम ॾियनि था।

0: ਹੋਇਓ ਹਿਨ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤਈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।